FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि। तदनुसार 9 जून सन 2026 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी

0: और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
2: ये संसार बड़ा विलक्षण है, इसमें रहने वाले प्राणी भी विलक्षण है। किसी ने इसे अघटन घटन पटी ऐसी माया की संज्ञा दी तो किसी ने इसे ईश्वर की लीला भूमि से संगीत किया, किसी ने इसे ब्रह्म का विवर्त माना तो किसी ने इसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहा, किसी ने कहा कि यह संसार धोखे की ठट्टी है तो किसी ने कहा कि यह संसार आनंद की कुटिया है, किसी ने कहा कि ये जो कुछ भी हो लेकिन दुखदाई है, यहां ब्रह्म भी आकर व्यथित होते हैं। पंचभूतेर फांदे ब्रह्म पड़े कांदे, पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म भी आकर यहां रोता है। इसीलिए किसी ने एक भजन गाया था, ये जगत बड़ा दुखदाई, हरि का भजन करो रे भाई। किसी ने कहा कि ये संसार मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तब किसी ने कहा, जब ये माया का संसार है और हमें सत्य का आभास कराकर दुख देता है तो क्यों इसमें फंसे हो, इससे बाहर निकल चलो, जाकर पुनः अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओ। बहुत से लोगों को ये बात जंच गई और वे चुपचाप किसी वन प्रांत में जाकर तप में लीन होकर इस संसार से निकलने का प्रयास करने लगे और कुछ लोग इस मायामय दुखमय जगत के अतीत पहुंच सदा हेतु भव बंधनों से मुक्त भी हो गए। अब उन सामान्य प्राणियों को कौन देखे जो जन्म जन्मांतरों से इस माया के कुचक्र में पड़कर अतिशय कष्ट भोगते हुए चले आ रहे हैं। इतिहास साक्षी है, पर दुख कातर होकर अवतार पुरुषों, आचार्यों, संतों, भक्त, राजपुत्रों तक ने अपने जीवन के महान परम पुरुषार्थ मोक्ष का भी त्याग किया और दूसरों के जीवन में सुख का समावेश किया। शिवी ने प्रार्थना करते हुए कहा, न तो हम कामये राज्यम न सुखम न पुनर्भवम, कामये दुखप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। रंति देव ने प्राणियों के दुख मुक्ति की याचना की। भगवान बुद्ध ने करुणा विगलित होकर प्राणियों के दुख मुक्ति का उपाय कठोर तप से खोजा। 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महान सन्यासी हुए जिन्होंने अपनी मुक्ति की आकांक्षा को ठुकराकर अपने देशवासियों के सुख सुविधा और प्रसन्नता के लिए कार्य किया। देशवासियों की वेदना ने उन्हें शांति से बैठने नहीं दिया। हिमालय की गुफाओं में ध्यानस्थ यति को संसार के प्राणियों की वेदना नीचे खींच कर लाती है और जन सुख के मार्गानुसंधान के लिए प्रेरित करती है और उसमें संलग्न करती है। जब उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से अहर्निश समाधि में निमग्न रहने की प्रार्थना की थी तब उन्हें गुरुदेव से फटकार तो मिली लेकिन साथ ही उनके भावी जीवन की झलक भी मिली। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, मैं तो समझता था तुम एक विशाल वटवृक्ष के समान बनोगे जिसकी छाया में लोग शांताश्रय पाएंगे। अब वो समय आ गया था संसार के दावानल से दग्ध प्राणियों को शीतलता प्रदान करने की। इसीलिए तो वे कालांतर में कहते हैं, जीवन भर दुख भोगने के बाद मैंने यही समझा है कि संसार रूपी नरक कुंड में यदि एक दिन के लिए भी एक व्यक्ति के मन में भी थोड़ा सा सुख और शांति उत्पन्न की जा सके तो केवल उतना ही सत्य है। भारत के वनगिरी, सरिता, उदधि पर्यंत गरीब की झोपड़ी से लेकर राजाओं तक की अट्टालिकाओं में देशवासियों के कल्याण की भावना से भ्रमण करने वाले विवेकानंद जन जन के विवेकानंद हो जाते हैं। देश ही नहीं विदेश के वैभव और सम्मान भी स्वामी विवेकानंद को क्षणभर के लिए भी अपने देशवासियों की संवेदना से पृथक नहीं कर सके। लोग भौतिक सुख की अप्राप्ति, तन दुख, मन व्यथा से पीड़ित होकर रोते हैं, कोई भव बंधन से व्यथित होकर तड़पता है, किंतु अपने देशवासियों के लिए कौन रोता है। किसी संत कवि ने बड़ी मार्मिकता से लिखा है, कोई तन के लिए रोता, कोई धन के लिए रोता, कोई जन के लिए रोता, कोई मन के लिए रोता, वही नर महामानव है, वही नर भाग्यशाली है जो अपना स्वार्थ तज करके वतन के लिए रोता। ऐसे महामानव थे स्वामी विवेकानंद।
1: कार्यक्रम चिंतन अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6 बजकर

अगर 10 मिनट हो चुके हैं, अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए गुरु नानक की रचना को, स्वर है संजीव अभ्यंकर का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना को, रचना है ब्रह्मानंद की।

0: डॉक्टर अश्विनी के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारी कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से। 6:30 हुए हैं। कृषि संबंधित जानकारी अब आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि चर्चा में। वार्ताकार हैं समीउल्लाह खान और चर्चा का विषय है फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात

0: पौधों के लिए। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो जरूरी है ही, लेकिन इनके अलावा जो हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके साथ आयरन, मैग्नीज, जिंक, निकल इत्यादि बहुत प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और सारे पोषक तत्वों का एक हमारे पौधों के जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, वनस्पतिक वृद्धि, पुष्पन, फलन, तो इन सभी स्थितियों में अलग-अलग न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अमूमन किसान भाई हम एक गलती करते आते हैं, हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, जैसे मैंने बोला कि आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया, और बहुत भांति भांति प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो वो हम उन पर ध्यान नहीं देते और सीधे हम यूरिया, डीएपी या इत्यादि पोषक तत्वों के स्रोत पर निर्भर हो जाते हैं। भूमि में अंधाधुंध उन्हीं तत्वों का समावेश करते हैं। इससे होता क्या है, अस्थायी तौर पे हमारा पौधा है हरापन दिखाता है, उत्पादन देता है, लेकिन उसके प्रोड्यूस में, उस उत्पाद में अगर हम धान से चावल बनाते हैं, दाल उत्पादन करते हैं, तो उसमें फाइबर, प्रोटीन, एमिनो एसिड, सेलेनियम और इत्यादि जो चीजें होनी चाहिए, क्या वो होती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम जो खा रहे हैं, हमारे बॉडी में जो हार्मोन का एक समुचित फ्लो होता है विभिन्न अवस्थाओं में, तो वो हार्मोन का फ्लो क्या हमारे भोजन से प्रवाहित और प्रबंधित हो रहे हैं? आज आप देख रहे हैं हमारे समाज में शुगर, बीपी और बहुत से प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। इसका कारण क्या है? हम वर्कआउट करते हैं, हम अपने नियमित जीवन शैली को अपनाते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया के बाद भी हम भोजन भी ले रहे हैं, तो उस थाली में वो चीज हमारे बॉडी को क्यों नहीं पहुंच रही है? इसी का मैं आप लोगों से एक चर्चा कर रहा हूं कि हमारे खेत में अगर पोषक तत्व तो सही होंगे, तो हमारे शरीर या हमारे थाली पे वो पोषक तत्व तो सही तरीके से पहुंचेंगे, अन्यथा ये संतुलन और ये समीकरण बिगड़ेगा, तो इसके दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं। तो नाइट्रोजन के लिए हम बात करते हैं, तो यूरिया है हमारे बीच में, वायुमंडल से जो बारिश होती है, हवा है हमारे बीच में, उसके अलावा हम और तरीके भी आजमा सकते हैं, जैविक खाद के तौर पे, हरी खाद के तौर पे, मिट्टी के स्ट्रक्चर, मिट्टी के टेक्सचर को सुधारें, हवा का संचार बढ़ाएं, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उसमें ग्रोथ बढ़ाएं, हम अपने माइकोराइजा, राइजोबियम इत्यादि का समावेश करें, ताकि जो भोजन हम उगा रहे हैं, अब अपने खाने के लिए ही तो उगा रहे हैं, और अगर वो हम अपने थाली पे वो पोषक तत्व नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमारे लिए वो खेती बहुत फायदेमंद नहीं होगी, और एक समय के बाद हमको पुरानी पद्धति पे लौटनी पड़ेगी, मिट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। आज हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग कर रहे हैं, एक निश्चित सीमा के ऊपर हमारे उत्पाद में केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई दवा नहीं होना चाहिए, किसी रेजिडुअल या कोई अवशेष नहीं होने चाहिए। अगर हम उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारे जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं वो वायलेट होंगी और हमारा एक्सपोर्ट खराब होगा। तो बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने उर्वरकों के जो स्रोत हैं उस पर ध्यान दें, मिट्टी को विभिन्न प्रकार की उर्वरक के माध्यम से उर्वरक दें, एक ही स्रोत पर निर्भर ना रखें, फसल का चक्रण भी करें, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें लगाएं, कुछ समय के लिए मिट्टी को रेस्ट भी दें। हम ये छोटी छोटी बातों का पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे और ये पोषक तत्व का प्रबंधन करेंगे, खेत भी हमारा सही रहेगा, फसलों का बढ़वार भी सही रहेगा और एटलीस्ट हमारे समाज का एक सेहत भी सुधरेगा। तो ये मेरा एक संदेश है, हम सभी मिलकर इसका पालन करेंगे और अपने फसलों के उत्पादन को सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे। 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस कार्यक्रम। देशगान हम आपको सुनवाएंगे 6:50 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं 7:05 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का प्रसारण समय होगा 7:35 का। 7:45 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका मोर भुइया हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9 बजे, 11 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आप सुन सकते हैं आकाशवाणी की रायपुर केंद्र से सुबह।

0: 10 बजे फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी का प्रसारण हम करेंगे 10:30 पर। अब सुनिए हमारे शाम के कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। नाटक झलकी प्रहसन आप सुनेंगे 5:10 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी हम आपको सुनवाएंगे 5:30 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा बिरसा मुंडा एक अमर क्रांतिकारी। साथ ही सुनिएगा क्रम एक ही कलाकार और चर्चा का विषय होगा ई पाठशाला पोर्टल ऐप। फिल्मी गीत पेश किए जाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में 6:20 पर, 7 बजे और 8:30 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकते हैं 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत आप सुनेंगे नकली बीज खाद की खरीदारी से बचे इस विषय पर चर्चा और नसीहत का विषय होगा खेती के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। साथ ही सुनिएगा क्रम आज का टिप कृषक प्रश्न मंच आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे 8:20 पर। विविध संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 10:00 और 10:30 पर होगा पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। ये थे हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
6: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
0: FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस भाग 37। गायक कलाकार हैं मिताली सिंह। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्तऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिव जी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

मानस गान अभी आप सुन रहे थे। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देश गान। रचना है महेश चंद्र वर्मा की।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश का 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा कृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 39 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुं, उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुं च मृत्योपरांतं वीरचक्रं प्रदत्तम्। आंध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा कृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबंधन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमंत्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2,000 व्यापार सौकर्यं, संपर्कं, राष्ट्रीय सुरक्षां, विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनः पश्चिम बंगस्य विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिम बंगस्य मुख्यमंत्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋण प्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमंत्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्य सर्वकारेण सह निकट समवायेन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना दीनाम नवीकृत संतृप्ति अभियानम प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्तर्राष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थी। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दांबुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। फिल्म है कामचोर, रचना है इंदिवर की और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818 में। ये भी अब जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नोवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नोवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876 वेस्ट बंगाल की हुगली जेला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे जुर्म फिल्म से। आवाजें हैं कुमार शानू और साधना सरगम की, तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने और गीतकार हैं इंदिवर।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
7: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
8: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
7: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
9: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
10: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अंतिम गीत आप सुनेंगे लगान फिल्म से, आवाजें हैं आशा भोसले और उदित नारायण की। जावेद अख्तर के बोल हैं और इस गीत को संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

इस गाने के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड पर 7:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार और सुप्रभात मित्रों, प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा। दोस्तों, शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। कहा जाता है कि यदि किसी बच्चे को कलम दे दी जाए तो उसका भविष्य संवर सकता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आर्थिक और सामाजिक कारणों से अनेक बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा का

संस्कार अधिनियम लागू किया गया। दोस्तों, शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसी महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया, जिसे राइट टू एजुकेशन या RTE नाम दिया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस कानून का उद्देश्य देश के हर बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। श्रोताओं, इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ है कि इस आयु वर्ग के बच्चों से सरकारी विद्यालयों में किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती और उन्हें विद्यालय तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर पर 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। इससे समाज के सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर मिलने में सहायता मिलती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के सम्मान और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है। दोस्तों, विद्यालयों में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध है। साथ ही विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय और पर्याप्त शिक्षकों जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किया गया है। श्रोताओं, यह अधिनियम केवल बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने का ही नहीं, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का भी प्रयास करता है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पर बच्चा अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्राप्त कर सके। दोस्तों, RTE के मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, बाल श्रम और अशिक्षा को कम करना, शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना है। श्रोताओं, आइए हम सब भी अपने आसपास के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। दोस्तों, एक शिक्षित बच्चा ही एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की नींव होता है। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मंगल भवन मंगलहारी।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
6: संदेश से पहले आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर। 7:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे मांदर। गायक कलाकार हैं संतोष शुक्ला और साथी।

आकाशवाणी एट 90। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

संतोष शुक्ला और साथियों की गाय इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम बाजीमांदर अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुबह 8:30 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका मोर भुइयां। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9:00, 11:00, दोपहर 12:00 से शाम 5:00 तक लगातार और रात्रि 9:00 से 10:00 तक। शाम पांच बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट झलकी प्रहसन। ये नाटक आप सुन सकते हैं 5:10 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे 5:30 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा बिरसा मुंडा एक अमर क्रांतिकारी। साथ ही सुनिएगा क्रम एक ही कलाकार। शाम 6:20 पर, 7:00 और रात्रि 8:30 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। किसान बंधुओं का कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकते हैं संध्या 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नकली बीज खाद की खरीदारी से बचे और नसीहत में चर्चा का विषय होगा खेती के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। साथ ही सुनिएगा क्रम आज का टिप आज का मंडी भाव आज का मौसम और कृषक प्रश्न मंच। गैर फिल्मी गीत

0: हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं रात्रि 8:20 पर। 10 बजे आप सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम और रात्रि 10:30 पर हम पेश करेंगे पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। ये थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

0: 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: And have a superb day. Namaskar.

0: सोलर पैनल की मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
7: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
8: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
7: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
9: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक हो रहा हूँ।
7: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
10: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56

0: नंदन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivicks after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. Federal Court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
3: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के अंक में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू को तीले। श्रोता साथी हो, आज के अंक में आप मन ल सुनवाथन कवि गोष्ठी, और एक कवि गोष्ठी के संचालन करत हैं श्री ईश्वर साहू।
1: संगवारी हो, जय जोहार। मोर भुइयां कार्यक्रम के कवि गोष्ठी में आज संग्रह हवें श्री शिव कुमार अंगारे जी, बंगला मटिया बालोदले, सुश्री सुनंदा शर्मा जी भनपुरी रायपुर ले, और मैं स्वयं ईश्वर साहू ग्राम बंधी बेमेतरा ले। आज की कवि गोष्ठी में मैं सबले पहली आमंत्रित करत हूँ सुश्री सुनंदा शर्मा जी ला।
2: बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर भैया। और जैसे कि आज मोर भुइयां कार्यक्रम के अंतर्गत

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया श्री सुनंदा शर्मा जी, ले आप मन सुने हो, जेठ के महीना, जेठ के महीना आवत है पसीना। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शिव कुमार अंगारे जिला अपन कविता पाठ करे बार।
2: ये साल घाम है, बड़ जीवलेवा हो गए है, और वही सब बात ले के मोरे रचना है सूरज रिसागे। घाम

0: गोंदली मही बासी, गोंदली मही बासी, आ माया थान संग सुहाय हो।
1: वाह वाह,
0: लाल कलिंदर आइस क्रीम लस्सी, आइस क्रीम लस्सी कर।

रुख राई, सब जीव रुख राई, सावन सावन गोहराए हो। विकास कही के जंगल झन काटो, जंगल झन काटो, जिनगी लदाव झन लगाव हो। अपने च गोड़ माँ, अपने च गोड़ माँ, टंगिया झन मारो, टंगिया झन मारो।

0: आघू के कवि गोष्ठीला आगे बढ़ाए बर में भैया ईश्वर साहू बंधीला आवाज देता हूँ।
1: धन्यवाद सुनंदा जी। गर्मी में यहाँ लेवत है, सबोला जियान परत है।
0: सही बात,
2: बढ़िया।
1: आवो वही जियान परत तेला सुनथन, कावर जियान परत है।
0: स्वागत है भैया।

जैसे बादल हयंग रागिरावत हवे, जैसे बादल हयंग रागिरावत हवे, जैसे बादल हयंग रागिरावत हवे।

डार हन भला करते चहे जिला हमन काट डारे हन भला करते चहे जिला हमन काट डारे हन बिन सुवारथ वो बिरछा हम लछाओ देवा थे बिन सुवारथ वो बिरछा हम लछाओ देवा थे अब दिनों दिन ये गर्मी उमिहाओ लेवा थे प्रकृति ला बिगाड़े हन विकास लाए बर।

बोल भाव करथे, अब दिनों दिन ये गर्मी उमिहाव लेवथे। कही थे कन बिगड़े ले भला काय हो जही।

0: आवो आगु के काव्य गोष्ठी अब हमन बरसात के आगमन के ऊपर सुनथन। तो सबले पहली मैं श्री शिव कुमार जी अंगारेला आमंत्रित करत हूँ बरसात के स्वागत बर कविता पढ़े बर।
1: जेठ के घाम जब जनाथे तब सब ल बरसात के सुरता आते, तो ही बात ला अपन रखत हो बादर ल बलायक कोशिश करत हो।
2: स्वागत है सर।
1: जेठ के

चादर, गजब तपिस झांझ झोला जेठ के महीना, बाई बिया कुल करी से अबड़ घमुरी पछीना, गजब तपिस झांझ झोला जेठ के महीना, बाई बिया कुल

0: घर।
1: रिमझिम के घुंघरू बांध बरखा रानी नाचही, लौकत बिजली के संग नर व ढोड़गा हँसही। लौकत बिजली के संग नर व ढोड़गा हँसही। मिचका मन एक सुरमा तब आल्हा बाँचही, मिचका मन एक सुरमा तब आल्हा बाँचही। पानी के पहली फुहार भुइया करही सिंगार, छलकंदे चारो मुड़ा तोर मया के गागर। झूम के बरस जा रे अब तो करिया बादर, झूम के बरस जा रे अब तो करिया बादर। गिर मुसर के धार पर खेत झन परिया, जाग ही धनहा डोली तहर से हलधरिया। गिर मुसर के धार पर खेत झन परिया, जाग ही धनहा डोली तहर से हलधरिया। गूंजन दे खेत खार करमायो ददरिया, सुन के अर्तता के राग जागे भुइया के भाग। सुन के अर्तता के राग जागे भुइया के भाग। मगन मन किसान लयब।

जो तंदे नांगल झूम के बरस जा रे अब तो करिया बादर, झूम के बरस जा रे अब तो करिया बादर। आखिरी बंद है। बादर तोर हाथ माँ है सबके दाना पानी, लिखतस ही तो सबके सुख दुख कहानी। बादर तोर हाथ माँ है सबके दाना पानी, लिखतस ही तो सबके सुख दुख कहानी। सरबस जिंदगी देवैया तय दधीचि दानी,

0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप मन सुनियो श्री शिव कुमार अंगारे जी ले। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुश्री सुनंदा शर्माला।
1: धन्यवाद भैया। और जेठ के बाद तो मन का ड्रेन बारिश के बाद अब शुरू हो चुके हैं, तो कैसे हम मन इंतजार करते हैं कि पानी गिरे, हम मन के मन प्रसन्न हो। मैं वही क्रम लागे बढ़ा था अपन का
0: स्वागत।
1: बरखरानी के होए अगोरा, बरखरानी के होए अगोरा, चम चम बिजली चमके,

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी हमन सुश्री सुंदर शर्मा जी ला सुनत रहन, बड़ अच्छा भाव लेके कविता सुनाइन। अब हमर संचालन करैया भाई ईश्वर साहू जी ला मैं आरो देत हो कि वो अपन सुघर कविता पाठ ला हम ला सुनाए।
2: बहुत धन्यवाद। जब बारिश आए बर रहते तब हमर प्रकृति बहुत आनंद से झूमर उठते, काबर की सबके प्यास बुताए बर रहते।
0: हाँ।
2: तो आओ, डबरा मुस्कावत है हासे नरवा ढोड़गा, रुख राही जामत है कांदी कोला करगा। अरे डबरा मुस्कावत है हासे नरवा ढोड़गा, रुख राही जामत है कांदी कोला करगा। धरती दाई हा सिंगार साजरे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। आगे है किसान बैला नागल ला धर के, भुइया ला जोहारत है सुघर पाँव पर के। भुइया ला जोहारत है सुघर पाँव पर के। झुमर झुमर बैला रेंगे सुन के रे ददरिया, अर्रतता नहीं लागे जोते हरिया हरिया। अर्रतता नहीं लागे जोते हरिया हरिया।

कोती जम के पानी पी के भुइया गजब सोंदे सोंद गम के अन्न दाता के भाग जागे रे। झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। डोंगरी का छार डोली भर के जला रंग है, भुइया के जीव जंतु सबोला उमंग है। भुइया के जीव जंतु सबोला उमंग है। कभू घाम छाव सूरज रही रही के झांके, शीतल पुरवैया सुघर संगीत साजे। शीतल पुरवैया सुघर संगीत साजे। घटा छागे चारों डहर निचट अंधिया।

चिरै चिरगुनु मनोलियागे रे, झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ागे रे, झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ागे रे, डबरा

0: झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। संगवारी हो, अब बेरा है जाए के, तो जाए के बेरा में एक ठन छोटे से कविता में फिर से आप मल्ला सुनावत हो।
1: स्वागत
0: मौका।

कुंवर होते माटी कुंवर जीव जंतु के तन घाम के देखे तरुआ झुकाते हो जाते अलहन आईला जथे रुख राई संग माया टा जथे पानी बिन बिरछा बिन जुड़ छई हाँ के जर जाते जिन गानी।

0: भिज गए भुइया के कोरा पेड़ लगा लो जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी हो आज के कवि गोष्ठी माँ श्री शिव कुमार अंगारे जी संग्रह रहीन, सुश्री सुनंदा शर्मा जी संग्रह रहीन और महू ईश्वर साहू संग्रह रहे। तो जाय के बेरा आप सबला जय जोहार जय छत्तीसगढ़।
1: अभी आप मन सुनत रहे हो कवि गोष्ठी, एकर संचालन करत रहीन श्री ईश्वर साहू और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के अंक ले विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका मोर भुइयां। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग

0: होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं चित्रलोक विविध भारती से। एजेंट विनोद इस फिल्म से गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, प्रीतम का संगीत है अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

फिल्म है सिम्बा, राहत फतेह अली खान, असीज कौर की आवाजों में ये गीत। संगीत दिया तनिष्क बागची ने।

तुम्हारी सुलू इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और साशा तिरुपति की आवाजों में जावेद अख्तर ने इसे लिखा और तनिष्क का म्यूजिक था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर यह है फिल्म का नाम। शेखर रावजानी, समीर सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाजें, विशाल शेखर का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं चित्रलोक इस वक्त विविध भारती से। रावता फिल्म का नाम है। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत सुनिए। प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं, लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों, फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया।

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।

विराज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।
1: देख

0: राज खोसला ने अपनी शैली से हटकर, टाइल्स से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म सोलवा साल।
1: हर

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 9:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के 3 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत होगी। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल हैं। भोजराम साहू बालो जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने वर्ष 2025 में मणिपुर में एक आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। वहीं पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख लंबे समय से बस्तर और राजनांदगांव के दुर्गम जंगलों में नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख को उनके अदम्य साहस, असाधारण वीरता और राष्ट्र सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। इन्होंने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान विषम परिस्थितियों में प्रदर्शित अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल और कर्तव्य निष्ठा से न केवल अभियान को सफल बनाया बल्कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई ऊर्जा भी दी है। उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी छत्तीसगढ़ पुलिस के दोनों अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से पीएमएसएमए के 10 वर्ष एक दशक की देखभाल राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे से नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने धान खरीदी में करीब 4.5 करोड़ रुपए के गबन मामले में लंबे समय से फरार 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में वर्ष 2020-21 के दौरान 17,210 क्विंटल से अधिक धान की हेराफेरी की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है। इस दौरान करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के 3 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत होगी और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 10 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी।
0: कार्यक्रम उजाले की ओर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अपने नागरिकों की खुशहाली के लिए प्रदेश शासन कृत संकल्पित है। सरकार ऐसा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती जिससे संवादहीनता की स्थिति पैदा हो। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई है वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम। राज्य में उद्योगों की स्थापना और निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए ये एक एकीकृत औद्योगिक मंच है। सिंगल विंडो सिस्टम से कम समय में सभी सेवाएं एक जगह पर पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध होती है। इससे भूमि आवंटन और सब्सिडी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के आ जाने से विभिन्न विभागों से मिलने वाली स्वीकृतियों का समय अधिकतम 30 दिन हो गया है। साथ ही 90 से अधिक औद्योगिक सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गई है। इसके साथ सेम डे इंस्पेक्शन रिपोर्टिंग को जोड़कर इसे द्रुतगामी बना दिया गया है ताकि उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया सरल और तेज हो सके।
1: मैं ऋतुराज ताम्रकार, उप संचालक उद्योग संचालनालय रायपुर में पदस्थ हूँ। छत्तीसगढ़ आज देश के उभरते हुए औद्योगिक राज्यों में अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। हमारी औद्योगिक विकास नीति 2024-30 और निवेशक अनुकूल दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य है कि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने और संचालित करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से उपलब्ध हो। इसी सोच को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 इसके अंतर्गत इन्वेस्ट सीजी पोर्टल विकसित किया है जो निवेशकों और शासन के बीच एक आधुनिक डिजिटल और पारदर्शी मंच के रूप में कार्य कर रहा है। निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के दौरान विभिन्न विभागों से अनुमति, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था। कई बार आवेदन की स्थिति जानना भी चुनौतीपूर्ण होता था। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्वेस्ट सीजी को एक ऐसे एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है जहां निवेशक को अधिकांश सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। वर्तमान में इन्वेस्ट सीजी के माध्यम से 10 विभागों की 130 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। निवेशक एक ही पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अपने आवेदन की प्रगति को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। एक बार आवेदन में दी गई जानकारी को बार बार भरने की भी आवश्यकता नहीं रहती। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सिस्टम में स्वतः उपलब्ध हो जाती है। 2.0 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पारदर्शिता और जवाबदेही। जब कोई आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होती है। आवेदन किस अधिकारी के पास लंबित है, किस स्तर पर परीक्षण चल रहा है, आगे क्या कार्यवाही हुई है, इसकी जानकारी सिस्टम में उपलब्ध रहती है। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ता है। इसके साथ ही विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। इससे विभागों की जवाबदेहिता बढ़ती है और निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने में सुगमता केवल नियमों को सरल बनाने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि निवेशक अपना समय उद्योग के विकास और अपने उत्पादन पर लगाएं, न कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में। इन्वेस्ट सीजी इसी उद्देश्य को पूरा करता है। इस प्रणाली के माध्यम से विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। पहले जहां विभिन्न विभागों में अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे, वहीं अब एकीकृत डिजिटल व्यवस्था के कारण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बन गई है। इससे समय की भी बचत होती है, कागजी कार्यवाही कम होती है और निवेशकों को एक बेहतर अनुभव प्राप्त होता है। साथ ही एक बार आवेदन में दी गई जानकारी को बार बार भरने की आवश्यकता नहीं रहती। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सिस्टम में स्वतः उपलब्ध होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया। इसके साथ साथ इन्वेस्ट सीजी निवेशकों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश के क्या अवसर है, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता, कोई सेक्टर विशेष में क्या संभावनाएं हैं, निर्यात, स्टार्टअप, उद्यमिता प्रशिक्षण, इस तरह की समस्त जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। अर्थात निवेश की योजना बनाने से लेकर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने तक की पूरी यात्रा को एक ही डिजिटल इकोसिस्टम में समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने नई तकनीकों का भी प्रयोग करना शुरू किया है। तो हमने ये किया कि निवेशकों की सहायता के लिए वाणी AI आधारित एक वर्चुअल असिस्टेंस उपलब्ध है। वाणी के माध्यम से निवेशक जो है अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं, सेवाओं और प्रावधानों की जानकारी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इससे जानकारी सामान्य जन तक और भी आसानी से पहुंच जाती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का स्पष्ट विश्वास है कि निवेशक निवेश आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है निवेशकों को भरोसेमंद, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं।

प्रदान करना। हमारा सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो तकनीक के माध्यम से प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी और निवेशक केंद्रित बना रहा है। आज छत्तीसगढ़ केवल प्राकृतिक संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रगतिशील नीतियों और निवेशक अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी जाना जा रहा है। इन्वेस्टजी जैसे डिजिटल प्लस प्लेटफॉर्म इस परिवर्तन के प्रमुख आधार है। मैं सभी उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता हूं कि वे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं और राज्य की विकास यात्रा के भागीदार बने।

0: छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। सरकार ये चाहती है कि प्रदेश की युवा शक्ति इधर उधर भटके बिना अपने ही राज्य में रोजगार पाकर राज्य की उन्नति में सहायक बने। छत्तीसगढ़ अब बड़ी ही तेजी के साथ औद्योगिक और तकनीकी हब बन रहा है। ये अब निवेश का सबसे आकर्षक केंद्र बन चुका है। छत्तीसगढ़ में कई संरचनात्मक सुधार लागू किए गए हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।
1: मैं गुंजन शुक्ला, मुख्य निवेशक वाजपेयी छत्तीसगढ़। साथियों, जैसा कि आप सभी भलीभांति जानते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की ये पावन धरती हमारे देश की औद्योगिक तरक्की का एक बहुत मजबूत पावर हाउस बनती जा रही है और शासन की सुगम नीति के कारण उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर लगातार अग्रसर है। फैक्ट्रियों और मिलों की धड़कनों के देने का काम वाल्व या वाष्प यंत्र करते हैं। हमारे विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी हमारे प्रदेश की औद्योगिक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखने के लिए और आपकी सेवा में सर्वदेश पर रहने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि बेहतर से बेहतर सर्विस देकर एक सुरक्षित वातावरण में छत्तीसगढ़ को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार और उद्योग को और अधिक सफल बनाने और आसान बनाने की अवधारणा को एक नई ऊंचाई पर ले आया जा सके। इसी कड़ी में सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ शासन के मार्गदर्शन में एक बेहद आसान डिजिटल समाधान SWS 2.0 वन क्लिक बनाया गया है। आइए सरल शब्दों में इसे समझते हैं कि एक नया पोर्टल आपके लिए कितना मददगार साबित होगा और इसे अधिक बेहतर बनाने के लिए भविष्य में हम निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने और व्यवसाय को पंजीकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक नया एकीकृत वन क्लिक और सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल से बॉयलर से संबंधित सुरक्षाओं में कितनी बढ़ोतरी हुई है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। एक ही छत के नीचे अब आपको सब कुछ मिलेगा। बॉयलर की स्थापना से लेकर ड्रॉइंग्स का अनुमोदन एवं बॉयलर का हर साल होने वाला रिन्यूअल, ये सभी सुविधाएं एक ही वेबसाइट पे उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त वेल्डर टेस्ट की नई सुविधा हमने चालू की है SWS 2 में, जिससे बॉयलर को सुरक्षित चलाने के लिए कुशल वेल्डर्स की जो जरूरत होती है उसकी कमी को छत्तीसगढ़ राज्य में ही टेस्ट और सर्टिफिकेशन के माध्यम से पूर्ण किया लिया जाएगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है जिससे उद्योगों को समय पर प्रमाणित कुशल कारीगर मिल सके। इकोनॉमाइजर की सेवा को भी हमने ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और उसका सालाना रिन्यूअल भी अभी एक ही पोर्टल में जोड़ दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से स्थानांतरित होने वाले बॉयलरों को स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन प्रारंभ कर दी गई है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि उद्योगों में अब सरकारी जो काम है वो कागजी काम बहुत आसान कर दिया गया है। कागजी काम की जरूरत ही नहीं है। समझने के लिए बहुत एक आसान फॉर्म्स हमने बनाए हैं। आवेदन फॉर्म्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो पूरी जानकारी देने के साथ साथ बेहद सरल भी रहे, जिसे भरने में किसी भी इंडस्ट्री को कोई उलझन नहीं है। जब आप कोई एक फॉर्म भरते हैं और दोबारा उस फॉर्म को लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं तो बुनियादी जानकारी जैसे फैक्ट्री का नाम, बॉयलर का मॉडल, पता सब फॉर्म में पहले से

0: बढ़ावा मिलेगा, जिससे आपका कीमती समय बचेगा। करेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है, ऑनरशिप चेंज होने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है और यह भी प्रक्रिया सब ऑनलाइन शामिल कर ली गई है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फाइलों के निपटारे और काम की रफ्तार में बहुत तेजी से गति आई है। दिनों की पक्की सीमा कर दी गई है, जिसके लिए लोक सेवा गारंटी नियमों के अंतर्गत हर काम के लिए दिन तय कर दिए गए हैं। बॉयलर के रजिस्ट्रेशन नियम निरीक्षण के लिए अधिकतम 30 दिन और नवीनीकरण के लिए अधिकतम 15 दिन का समय सीमा है। कंप्यूटर का ऑटोमेटिक रिमाइंडर है, यदि किसी फाइल पर तय समय पर फैसला नहीं हो पाता है तो कंप्यूटर सिस्टम उसे खुद ब खुद वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में ले आएगा। अगर कोई राइस मिल या इंडस्ट्री वाला बॉयलर का रिन्यूअल या वार्षिक अनुमोदन कराना भूल जाता है तो हमारा सिस्टम उसे 30 दिन पहले ही SMS के माध्यम से याद दिला देगा, जिससे समय पर उसकी जांच हो सकती है और फैक्ट्री का अनावश्यक उत्पादन रुकेगा भी नहीं। ऑनलाइन बातचीत और सुधार में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे आवेदन को खारिज करने की जगह हमारे अधिकारी उसे सीधे ऑनलाइन पे ही आप संपर्क कर सकते हैं और उसे करेक्शन करके वापस अपलोड कर सकते हैं। सबसे प्रमुख जो चीज हमने इसमें इंट्रोड्यूस की है वो पारदर्शिता, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में काम करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता सबसे अच्छी बात होती है। घर बैठे अब कोई भी उद्योगपति अपने आवेदन की प्रकृति को मोबाइल या कंप्यूटर पर लाइव देख सकता है। यदि समय पर आवेदन पे आपको सेवा नहीं प्राप्त होती है तो पोर्टल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी समीक्षा का अनुरोध भी कर सकते हैं। जब कोई भी इंस्पेक्टर साइट पे जांच के लिए जाता है, मोबाइल ऐप के माध्यम से उसकी सटीक लोकेशन और समय सिस्टम खुद ही दर्ज हो जाएगा। निरीक्षण के समय बॉयलर की तस्वीर जो ली जाती है वो लाइव रहेगी, जिससे अपने आप यह साबित हो जाएगा कि जांच किस तारीख को किस समय और किस कारखाने में जाके की गई। इसके बाद जब जैसे ही जांच का काम सफलतापूर्वक पूर्ण होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट का लिंक तुरंत आपके सिंगल विंडो ID पर आ जाता है, जिसे आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत प्रमाण पत्र प्राप्त होने से आप प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। अंत में प्रिय मित्रों, हमारा एकमात्र लक्ष्य प्रगतिशील और सुरक्षित औद्योगिक माहौल तैयार करना है, जहां हमारी फैक्ट्री बिना किसी रुकावट के प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। वाजपेयी निदेशालय की यह पहल और पेपरलेस व्यवस्था छत्तीसगढ़ के उद्योगों को एक नया आयाम देगी। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस आधुनिक SWS 2.0 पोर्टल को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं और सुरक्षा के साथ साथ छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: सिस्टम को सुशासन की दिशा में एक अभूतपूर्व पहल के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके तहत प्रदेश में निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाया है। अब सभी विभाग एक ही मंच पर आ गए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कम समय में ऑनलाइन क्लीयरेंस इस सिस्टम की विशेषता है। सिंगल विंडो सिस्टम यानी एक क्लिक में मंजूरी। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र रायपुर के उप महाप्रबंधक श्री विश्वजीत का कहना है,
1: अगर देखें कि एक उद्योग को स्थापित होने के लिए विभिन्न शासकीय विभागों से अनुमति एनओसी क्लीयरेंस की आवश्यकता होती है, तो इन सब के लिए भी औद्योगिक नीति के अंदर ही ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए उद्योग विभाग की invest.cg.gov.in वेबसाइट लाइव है। इस वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न शासकीय एनओसी अनुज्ञप्ति लाइसेंस इत्यादि के लिए, जो कि उद्योग स्थापना करने के लिए उद्योग को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, इन सब के लिए जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, वो सीधे इस वेबसाइट के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन एक ही जगह पर एकल खिड़की के रूप में आवेदन कर सकते हैं। जब कोई उद्योग स्थापित होता है तो उद्योग स्थापित करने के लिए जो पूंजी निवेश निवेशक करता है, यानी जो अपने पैसे लगाता है उद्योग को स्थापित करने के लिए, तो उस पर शासन की तरफ से अनुदान छूट का प्रावधान है। तो ये अनुदान छूट विभिन्न प्रकार के अनुदान छूट औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत है, जैसे कि कुछ का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे स्टाम्प शुल्क से छूट, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में भी छूट है। इन सब के अलावा ऐसे विभिन्न प्रकार के 20-22 प्रकार के अनुदान छूट एवं रियायतें इस नीति के अंतर्गत

निवेशकों को मिल सकती है। अर्थात कुल मिलाकर उद्योग लगाने में जो खर्च जो निवेश होता है उसका कुछ प्रतिशत नीति के माध्यम से निवेशक वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो यह निवेश प्रोत्साहन उद्योगों के सफल स्थापना के लिए इसलिए भी दिया जाता है कि अधिकाधिक मात्रा में वो छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को रोजगार दे सके और साथ ही साथ शीघ्र ही वो अपने उद्योग को स्थापित करके राज्य के व्यापार व्यवसाय और निवेश में प्रोत्साहन दे सके। तो जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेशों में भी जैसे जापान और दक्षिण कोरिया का भी दौरा कर नीति का प्रचार प्रसार किया, साथ ही साथ हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी ने विदेश में जर्मनी का दौरा किया था विगत वित्तीय वर्ष में, वर्ष 2025 में। इसके अलावा देश के जो प्रमुख शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, यहाँ पर भी निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशकों के निवेश के सम्मेलन किए गए, इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम किए गए, जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में निवेश के विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के अंदर रायपुर, बस्तर एवं अन्य समस्त जिलों में भी इन्वेस्टर कनेक्ट के कार्यक्रम सफलतापूर्वक कराए गए हैं, जिसमें भी संपूर्ण प्रदेश के निवेशकों उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न निवेश के प्रस्ताव उद्योग विभाग को दिए गए हैं और इसके आधार पर अभी पूंजी निवेश चल रहा है।

खासकर अब समझ रहा है। नई तेज और पारदर्शी योजनाओं की बदौलत ऐसी ही एक कारगर और सर्व सुलभ व्यवस्था का नाम है वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0। ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति लाने के दिशा में तेजी के साथ अग्रसर है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ अब कोर सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये अत्याधुनिक उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र बनने के लिए तैयार है।

छत्तीसगढ़ अब औद्योगिक विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए विकसित राज्य की श्रेणी में आने के लिए बेताब है। उद्योग धंधों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मांग और पूर्ति के वैश्विक सिद्धांत पर आधारित छत्तीसगढ़ की बाजार व्यवस्था में सिंगल विंडो सिस्टम का बड़ा योगदान है। उद्योग भले घरेलू या पारंपरिक हो या फिर अति आधुनिक तकनीक पर आधारित, सभी का लक्ष्य एक है और वो है छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास।

0: छत्तीसगढ़ में छोटे मझौले और भारी उद्योग पहले से ही स्थापित हैं, लेकिन अब वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम के आ जाने से नए उद्योगों को लगाने का सिलसिला गति पकड़ रहा है। इससे प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही है और कौशल विकास को भी बल मिल रहा है। तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षित युवा नई औद्योगिक नीति के प्रति जितने आश्वस्त हैं, उतने ही उत्साहित हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर ये है सरकार के प्रति युवाओं और निवेशकों का विश्वास। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र सरगुजा के मुख्य महाप्रबंधक श्री त्रिपुरारी राम कश्यप।
1: औद्योगिक विकास नीति के तहत हम लोग शासन के निर्देश के अनुसार जो औद्योगिक विकास नीति को हमारे जिले सरगुजा के हिसाब से तीन समूह में बांटा गया है। पूरे राज्य में तीन समूह, समूह एक, समूह दो और समूह तीन, जिसमें हमारे जिले के 7 विकास खंड में समूह दो और समूह तीन प्रावधानित है। समूह एक में अंबिकापुर विकास खंड है और समूह तीन में लुंड्रा, बतौली, मैनपाट, सीतापुर, ये 6 विकास खंड अंबित है। तो मैं जो शासन के प्रावधान हैं और छूट और रियायतें हैं उसके संबंध में बिंदुवार बताना चाहूंगा। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योग सम्मिलित हैं। सूक्ष्म उद्योग में निवेश राशि 1 करोड़ तक का है और लघु उद्योग में 10 करोड़ तक का है, मध्यम में 50 करोड़ और बृहद में 50 करोड़ से अधिक की है। इस राशि में बताना चाहूंगा कि ये राशि तो अधिकतम राशि है, लेकिन इसमें हम लोग न्यूनतम राशि से भी अपने उद्योगों को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे स्थायी पूंजी निवेश, इसमें जो भूमि रहता है या जो शेड बनता है फैक्ट्री के लिए, उसमें हमको सूक्ष्म उद्योग में 45% तक का छूट मिलता है। मतलब कोई उद्योग यदि 1 करोड़ का राशि का लागत है तो उसमें 45% छूट मिलेगा, ये लघु उद्योग में है। उसी प्रकार मध्यम उद्योग में 35% छूट है और अधिकतम राशि इसका 4.5 करोड़ है। ब्याज अनुदान में सूक्ष्म उद्योग में समूह एक मतलब अंबिकापुर विकास खंड में 45% का अनुदान है और समूह तीन मतलब अंबिकापुर छोड़ के 6 जो विकास खंड हमारे आते हैं जिले के अंतर्गत, उसमें 50% का अनुदान है। मतलब ब्याज अनुदान ऐसा है जैसे अपन बैंक से ऋण लेते हैं तो उसमें जो ब्याज लगता है उसमें 50% तक शासन अनुदान के रूप में संबंधित इकाई जो उद्योग लगाता है उसको दिया जाता है। उसी प्रकार लघु उद्योग के लिए अंबिकापुर विकास खंड में 45% छूट है, जो अधिकतम राशि 30 लाख तक की जाती है, और समूह तीन जो अंबिकापुर विकास खंड छोड़कर 6 विकास खंड बचते हैं उसमें 50% तक का अनुदान मिलता है, जो बैंक से ब्याज मिलता है उसमें। इसी प्रकार विद्युत शुल्क छूट, मतलब विद्युत शुल्क में कोई इकाई उद्योग लगाता है तो उसमें विद्युत शुल्क में जो छूट होता है, जो बिल देयक राशि होता है उसको छोड़ के जो विद्युत विभाग द्वारा शुल्क लिया जाता है उसमें 7 वर्ष तक का पूर्ण छूट अंबिकापुर विकास खंड में है और शेष विकास खंड में 9 वर्ष तक का पूर्ण छूट मिलता है। उसी प्रकार स्टाम्प शुल्क छूट में यदि कोई इकाई उद्योग लगाना चाहते हैं और किसी से जमीन खरीदते हैं उसमें भी जो स्टाम्प शुल्क का प्रावधान है उसमें 1 लाख तक का छूट इनको मिलता है। और उसी प्रकार बैंक से ऋण लेते हैं और उसमें जो अनुबंध करते हैं उसमें भी 1 लाख तक का छूट इनको स्टाम्प शुल्क से छूट मिलता है। उसी प्रकार परियोजना प्रतिवेदन में यदि उनकी लागत आती है उसमें 2% तक का छूट है, यदि कुल इनका लागत 1 करोड़ का आता है तो उसमें 2% 2 लाख, ये भी उसमें छूट का प्रावधान है।

का हर भूभाग अपनी किसी न किसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यही खासियत अपने संसाधनों के साथ अब उभर कर सामने आ रही है। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम वो झरोखा है जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत को लेकर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। संचालन करता है सुमित्रा पटेल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रवि आनंद।

0: जय जोहार संगी मनला राम राम। मैं हवा तुहर संगी सुमित्रा पटेल और आप मन सुनत हवा आप मन के मायारू कार्यक्रम हेलो संगी। आप जम्मो संगी सियान दाई दीदी और नूनी बाबू मन के फरमाइश ला पूरा करे बर हमर फोन के लाइन हर खुल गए है, तो संगी हो उठावत हवा मैं ये आप मन के पहली फोन ला। हेलो संगी।
1: हेलो संगी।
0: हाँ जी राम राम जय जोहार।
1: राम राम जय जोहार।
0: और कौन बोला था संगी?
1: मैं बजरंग शुक्ला फंदी ले श्याम देवांगन।
0: हाँ तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: और बतावा संगी आप मन के कोती मौसम के कैसे हालचाल है?
1: मौसम तो अभी बहुत गर्मी करत है।
0: अच्छा पानी वानी नहीं गिरी से का?
1: पानी दो दिन पहले गिरे रही से।
0: अच्छा हाँ तो बतावा संगी आप मन ला कौन से कलाकार के गीत पसंद है? अच्छा हाँ संगी तो लेवा सुना आप मन अपन मन पसंद कलाकार के ये सुघर गीत ला और याद करके माया बना के हमर कुती फोन लगाए है एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो संगीत।
1: जय राम संगीत।
0: जय राम संगीत। राम राम। जय जोहार।
1: दीदी भाग सिंह राजपूत।
0: हाँ, भाग सिंह राजपूत जी के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: और बतावा भैया, आप मन कैसे हवा?
1: बढ़िया हवन दीदी। खेती बाड़ी के काम काज चालू हो गए अब।
0: अच्छा, तो खेती बाड़ी में अभी का काम चलत है भैया?
1: अभी काटा खुटी सब बिना सकल चलत है दीदी।
0: अच्छा, खेत के साफ सफाई चलत है कहा?
1: हाँ हाँ
0: हाँ, ये तो जरूरी हवे भैया, है ना। अब मानसून तो आने ही वाला है, तो हम खेत ना तैयारी करके रखबो तब तो काम हो ही, है ना।
1: हाँ दीदी।
0: और बताओ भैया, आज आप मन कौन से कलाकार के गीत पसंद करा था?
1: कृष्ण कुमार पाटिल के आवाज में सुनवा दे दीदी।
0: अच्छा,
1: नीक लागे मोहारी छामो वाली गीत सुनवा दे।
0: हाँ संगवारी, तो लेवा सुना आप मन अपन मन पसंद कलाकार के ये गीत ला। और हमर कोती याद करके सुरता करके फोन लगाए है, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी।
0: धन्यवाद भैया।

0: कार्यक्रम है हेलो संगी।
1: हेलो संजी नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार, जय जोहार। और कौन बोला था संगी?
1: संजी संजी हाँ, चलिए बहुत ऊपर की छाव में।
0: हाँ
1: राजस्थान कैसे बोला रही था सुखी खाने
0: तो आप मन के हाँ। हमार को ईमेल आवत रहे थे है ना?
1: हाँ मेरा हाँ।
0: हाँ और बतावा संगवारी, आज आप मन के कोती मौसम कैसे है? पानी गिरा थे कि नहीं गिरा थे?
1: मौसम ने कहा कि हम लोग तो गर्मी में तो जी चुके थे।
0: अच्छा गर्मी करा थे?
1: घर में रह भी तो भपके थे, बाहर निकल भी तो धाम में चमचम चमचम रहा थे।
0: अच्छा तो ऐसे में तो घर में ही रहना पड़ी भैया है ना? और बतावा आप मन के कोती का बुता काम चला थे?
1: खेती किसानी में किसान लोग ने बच्चों से छोड़े थे।
0: अच्छा अच्छा हाँ
1: जगह
0: हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे ही काम करना है सुबह और संध्या के बेरा है ना?
1: हाँ।
0: और बतावा संगवारी, आज आप मन कौन से कलाकार के गीत ला पसंद करे है?
1: बेटा राम साहू के गीत है।
0: हाँ तो फोन करे है एक बार, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है भैया।
1: धन्यवाद।

0: हेलो संगी।
1: हेलो मैडम नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते जी, और कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
1: मैं नागू पात्र बोल रहा हूँ, ग्राम सांदोरिया जिला कालाहांडी उड़ीसा से।
0: अच्छा, तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो संगी माँ।
1: ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो आज आप मन के पहली बार फोन लगे है?
1: हाँ मैं पहली बार बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, हाँ और बताओ भैया, आज पहली बार आप मन के फोन लगे है तो आप मतलब बहुत खुशी हो तो ही है ना?
1: हाँ बहुत है मैडम।
0: अच्छा, तो आप मन के कोती का हालचाल है, का बूता काम चलत है?
1: हालचाल हमारे यहाँ पर कोई तो खेती बाड़ी के काम नहीं है, तो मौसम आने के बाद खेती बाड़ी के काम शुरू हो जाता है।
0: अच्छा, अभी खेती बाड़ी काम नहीं है कहा?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अच्छा अच्छा, तो बताओ भैया, आज आप मन कौन से कलाकार के गीत पसंद करा था?
1: आज गाना मुझे सुनना है पाता ले जा रहे गाड़ी वाला।
0: अच्छा हाँ, आप मन के फरमाइश बहुत ही अच्छा है भैया। तो हमार कुती आप मन फोन लगाए है, एकर बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।

0: संगी।
1: हेलो संगी।
0: हाँ जी, राम राम, जय जोहार।
1: राम राम, जय जोहार।
0: और कौन बोला था संगी?
1: मैं मोती मानिकपुरी बोला था जी, गणेश धाम पटपुरी से।
0: हाँ, मोती मानिकपुरी के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: तो आप मन के बहुत दिन बाद फोन लगे है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत दिन बाद लगे थे।
0: अच्छा, तो बहुत ही अच्छा बात है कि आप मन के फोन लगी से कहा। और बतावा दीदी, आप मन के कोती का हाल चाल है? आप मन कैसे हवा, का बुता काम चलत है?
1: मन तो बढ़िया हवा दीदी, हमारे कोती अभी अब्बड़ गर्मी हवे।
0: अच्छा, अब्बड़ गर्मी है कहा।
1: और
0: पानी वानी गिरा थे कि नहीं?
1: अभी पानी वानी नहीं गिरा थे, थोड़ा हवा तूफान है तो, लेकिन पानी नहीं गिरा थे।
0: अच्छा अच्छा, हाँ तो पानी नहीं गिरे तो गर्मी तो रही कहा है ना। और खेती बाड़ी में का बुता काम चला थे?
1: अभी खेती किसानी के काटक से बिजाई चला थे।
0: अच्छा, मतलब खेत के तैयारी चला थे कहा, खेत के साफ सफाई करना चला थे। अच्छा हाँ, तो बतावा दीदी, आज आप मन के फोन लगे है तो का गीत सुनना पसंद करा था?
1: आज पर्यावरण दिवस है दीदी, आज का।
0: हाँ अच्छा, रुक राई से संबंधित गीत सुनना चाहा था आप मन? अच्छा हाँ संगवारी, तो लेवा सुना आप मन के मन पसंद ये गीत ला। और हमार को ती फोन लगाया आप मन ला, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो संगी।
2: हेलो संगी, राम राम दीदी।
0: हाँ राम राम भैया, कौन बोला था और कहाँ ले बोला था?
2: मैं ग्राम फिलौरी 52 लाख जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से आपके नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोला था बहन।
0: सुरित रमेश साहू जी के बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद बहनी।
0: और बतावा, आप मन के फोन बहुत दिन बाद लगे है।
2: कहा करे बहनी, सब नया संगवारी वाला हमारा सब मौका मिलना चाहिए बहनी।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा।
2: अरे सही जी साहू के घर पर्यावरण बरसात हमारे मन के है, श्रोता संगवारी मन की आँखें खोला एक ठन गाना हमें बहनी, वो गाना हमारा आकाशवाणी रायगढ़ केंद्र में यदि कहूँ सुना देते बहनी।
0: हाँ,
2: और कुछ संगवारी का नाम ले लो का बहनी, आपके प्रशंसक संगवारी मन के।
0: हाँ हाँ, ले लेवा ले लेवा।
2: तो हमारे गणेश धाम परसुली से हमारे भाई साहब जितेंद्र दास मानिकपुरी है, शंकर सोमनी से नारायण लाल साहू है, गन बघेरा से योगेश शर्मा जी है, करी भदक से पुरुषोत्तम निर्मलकर जी है, गेंदा टोला बाजार चौक से वीरेंद्र कुमार।

0: दादाजी है बहनी हूँ आर्यनगर खोखा भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल हवा बहनी और बहनी श्रोता मन के नाम लेना का बहनी विचार जन हमारे बहनी श्रोती है जो आप मन के माध्यम से बने बने हवे श्रोता सुनते घलो
1: बिल्कुल ले ले
0: तो हमारे अनूपपुर मध्य प्रदेश से जय मंत्री केमट जी है और माने गाँव मलाजखंड से बसंती बघेल जी है और आर्यन रेडियो के उद्घोषिका बहन पूनम गौतम जी।
1: अच्छा हाँ तो ये सबो संगी संगवारी मान आप मन के मित्र हवे है ना तो आप सबो जान मिल के सुनाओ ये सुघर लोक गीतला और हमर कोती फोन लगाए है एकर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है।

0: तो संगी हो, ये तो रही आज के कार्यक्रम हेलो संगी। और ये कार्यक्रम मा तकनीकी सहयोग मिले रही से कौशलेंद्र पैकरा के, और प्रस्तुति सहयोग मिले रही से रामविलास पटेल के, और ये कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही है रवि आनंद। तो संगी हो, ये कार्यक्रम ले मोर जाए के बिला हो थे, तो मोला देवा विदा। आप सबो संगी संगवारी मल्ला सुमित्रा पटेल के राम राम, जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विविध भारती कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए आरंभ करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग इस भक्ति गीत के साथ, जिसे लिखा है तुलसीदास ने, केदार पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया है और अपने सुरों से सजाया है साधना सरगम ने।

हम सुन रहे थे अनफॉरगेटेबल ट्रीट आशा भोसले के इस एल्बम से, आशा भोसले की आवाज़ में मीरा भजन और जयदेव की इस कृति को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों की इस एल्बम से, जिसे गाया है शंकर शंभू कव्वाल और साथियों ने। एल्बम का नाम है जिम्बो फाइंड्स अ सन, अनजान के बोल हैं और सरदार सिंह का संगीत।

0: तो हाय देखते ही रह गए हम भी, उठाए जाम भला होश किसे बाकी है।
1: किसे पीने की हसरत थी, ये पीना तो बहाना था।

सितम एल्बम से यह नगमा हम सुन रहे थे चंदन दास की आवाज़ में। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल्स एल्बम से, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में, जिसे लिखा सुदर्शन फाकिर ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम, सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं मीरा भजन बाई लता मंगेशकर इस एल्बम से, लता मंगेशकर की आवाज में, गीत के बोल मीरा बाई के, हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे एल्बम मनमस्त कबीरा से बैजू मंगेशकर की आवाज़ में, कबीर के बोल और बैजू मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे वडाली ब्रदर्स की आवाज में याद पिया की आए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों से सजे हुए इस नगमे को, जिसे महेश चेदर ने संगीतबद्ध किया है और इस एल्बम का नाम है जिगर से जिगर तक।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर जगजीत सिंह ने, शाहिद कबीर ने इसे लिखा है, जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है और हमने लिया है द बेस्ट ऑफ सजदास सजदा एल्बम से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री आज सीएम हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आज से प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नवा रायपुर में स्थित सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076-1076 होगा। ये एक टोल फ्री नंबर होगा। इसके अलावा नागरिक वेब मोबाइल, मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होते ही आवेदक को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। इसके जरिए वो अपनी शिकायत की पूरी प्रगति को ऑनलाइन देख सकेगा। ये हेल्पलाइन नंबर सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे संचालित रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। उन्हें आदिवासी गौरव, देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का अमर प्रतीक बताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को उनके अधिकारों और विरासत की रक्षा के लिए संगठित किया और जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से पीएमएसएमए के 10 वर्ष एक दशक की देखभाल राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। रायपुर जिले में कल देर रात तेज बारिश हुई, इससे तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून की बारिश बताया है। अगले 2-3 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बताई गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में गर्जन, तेज हवा और हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने तथा 11 जून से इसमें वृद्धि होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री आज सीएम हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि

0: अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे दो आंखें 12 हाथ फिल्म से यह गीत, जिसे साथियों ने गाया भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आज दिनांक है 9 जून, और आज ही के दिन यानी 9 जून 1912 को सोनावडे विलेज यानी सोनावडे गांव में सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में जन्म लिया था वसंत देसाई ने, यानी आज उनका जन्मदिवस है। तो चलिए उनके ही गीतों के साथ यानी वसंत देसाई के गीतों के साथ हम उन्हें याद करते हैं।

0: हम सुन रहे थे दो बहनें फिल्म से प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोलों को वसंत देसाई ने जिसे संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में
2: जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए लेते हैं यादों की महफिल में एक छोटा सा विराम, उसके बाद पुनः हाजिर होते हैं हम आपके बीच में बहुत सुंदर से नगमों को लेकर जिसे सजाया है हमने संगीतकार वसंत देसाई की यादों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में गुड्डी फिल्म का यह गीत। वाणी जयराम की आवाज में गुलजार की बोल है और संगीतकार वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को। गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने गाया है। भरत ब्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत। आइए सुनते हैं।

हम सुन रहे थे गीत तूफान और दिया फिल्म से मन्ना डे की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म प्यार की प्यास से लता मंगेशकर तलत महबूब पर की आवाज में भरत व्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत।

हम सुन रहे थे अमर ज्योति फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म से। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। अनंत श्याम ने इसे लिखा है और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया है।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है फिल्म यादें से, लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और वसंत देसाई का संगीत।

हम सुन रहे थे आशीर्वाद फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में जहां हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को उनके सुंदर गीतों के लिए। गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज है, भरत व्यास के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

और इसी के साथ समाप्त होता है आज का यह कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे थे हम संगीतकार वसंत देसाई को। आज उनका जन्मदिवस है और उनको याद करते हुए हमने उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीतों को सुना। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस प्रस्तुत होगा थोड़ी ही देर के बाद।

चलिए स्वागत है आप सभी का विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में और स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। अब ये सुरीला सफर शुरू हो रहा है और आज की जो इबारत है वो हम आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि कुछ मित्र हैं जो सोशल मीडिया पर हमें नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए इबारत हम जरूर पढ़ेंगे। इबारत थोड़ी बड़ी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी पहेलियां हैं तो हम प्रत्येक गीत के पहले आपको ये पहेली सुनाते जाएंगे। हम कुछ पहेलियां दे रहे हैं उसके साथ आज के शब्दों को ढूंढना है और बताना है और पहेली प्रत्येक गीत के पहले आपके बीच में रखी जाएगी। और अभी अब हम जो चल रहे हैं इस इबारत के साथ में, हमने एक और बात आपसे कही है कि अगर आपके पास में कुछ पहेलियां हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें, हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई गीत हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम के होने होने तक। तो चलिए चलते हैं, आज के कुछ संदेश हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे भेजे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर को शब्द संगीत पहेली का रूप दिया गया है। हम श्रोताओं को दिमागी कसरत और कुछ नवीन प्रयोग अच्छा लगा और सराहनीय भी, धन्यवाद कुछ नई सोच के लिए। और उन्होंने सारे उत्तर दिए हैं एक के बाद एक। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि कार्यक्रमों में विविधता ही विविध भारती की पहचान है, पहेलियों का सुंदर प्रयोग कुछ अलग हटकर करने की प्रामाणिकता है, समरसता अक्सर मनोरंजन बाधित होती है, अतः यह विविधता स्वागत योग्य है। और इसके साथ ही उन्होंने भी हर पहेली का उत्तर दिया है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक और संदेश जहां हमारे मित्र लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज पहेलियां पूछते हैं। कभी कक्षा के खाली समय में दो चार लोग यह खेल खेला करते थे या किसी शादी के फंक्शन में रिश्तेदारों का जमघट होता था तो लोग मनोरंजन के लिए पहेलियां बुझाने का काम करते थे और सही जवाब पर ठहाके लगाते थे। हमारे एक श्रोता ने तो बड़ी गंभीर बात लिखी है, वो लिखते हैं पहेलियों की विषय वस्तु में वैदिक पौराणिक प्राकृतिक और लोक जीवन के प्रसंग प्रचुर मात्रा में देखने सुनने को मिलते हैं। पहेलियां ज्ञानवर्धक और स्मरण शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कही और सीखी जाती हैं। पहेलियां प्रायः व्यंजना शैली में रची जाती हैं। इनकी भाषा में विशिष्ट भंगिमा होती है, रचना में बाकपन होता है। इस कारण इसका अर्थ लगाने में दिमागी कसरत तो होती ही है, भाषा भी निखरती है और विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा और हाजिर जवाबी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ तो कह रहे हैं कि वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं इन पहेलियों के साथ में, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि पहेलियां दिमाग की कसरत नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं, धैर्य और दृष्टिकोण का एक खूबसूरत दर्पण है। वे सिखाती हैं कि जीवन की उलझन में गहरा अर्थ छिपा है। यह जीवन के उस फलसफे को दर्शाती हैं जहां हर सवाल का जवाब हमारे अपने भीतर मौजूद होता है और शब्दों और छवियों का यह खेल हमें अपनों के साथ जोड़ता है, संवाद बढ़ाता है और कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाहे वह जीवन की जटिलता हो या शब्दों का कोई मनमोहक खेल, हर पहेली हमें बेहतर और समझदार बनाती है। तो चलिए हम चल रहे हैं उन्हीं पहेलियों की तरफ। हमारे श्रोता ने एक और बात लिखी है कि ये पहेली वाला विषय नहीं है, इन्होंने अपने किसी दूसरे पहेली विषय से जोड़कर लिखा है। तब हम जब वह गीत हम सुनाएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु अब हम चलते हैं इस पहले गीत की तरफ। और ये पहला गीत जो है वो बड़ा सुंदर सा है, आपको पहचानना है कि इसके ये जो गायक कलाकार हैं वो कौन है। और अगर आपके मन में कोई पहेली है तो उस पहेली को हम तक पहुँचाना है और उस पहेली का उत्तर भी पहुँचाइएगा। हमारे श्रोताओं जितने समझदार नहीं हैं तो हम चाहते हैं आप उत्तर सहित पहुंचाएं और हम अगला गीत आपको पहुंचा दें, सौंप दें।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत जो हमने लिया था फिल्म पहेली से। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और रविंद्र जैन ने ही इसे संगीतबद्ध किया। अब हमने आपसे पूछा था कि इसके जो गायक कलाकार हैं उनका नाम आप हमें सुझा दें, बता दें। तो आपने हमें उन गायक कलाकारों के नाम बताने के साथ साथ बड़ी सुंदर तरीके से बता दिया इस पूरे गीत के बारे में। हमारे श्रोता लिखते हैं, सुरेश वाडकर हेमलता और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज़ में 1977 के दशक के कुछ सबसे खूबसूरत और यादगार गानों का आनंद लें। ये गाने केवल मधुर हैं और सहेली हो पहेली पूछो जैसे गानों के दौर सुंदर दौर है। और इन्होंने इसी फिल्म के इस फिल्म के नाम के बारे में भी जिक्र किया है कि ये फिल्म है पहेली। और इसके साथ ही हमारे कई सारे और श्रोताओं ने भी ये उत्तर दिया है, उसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। और इस सुंदर आगाज के साथ में अब हम आज की पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। और आज की पहली पहेली है, जो जन्म से भी पहले पहचान लेती है, जो जन्म से पहले भी पहचान लेती है और मृत्यु के बाद भी स्मृति बनकर साथ चलती है, जिसे खोकर लोग बड़े तो हो जाते हैं पर कभी सचमुच बड़े नहीं हो पाते हैं। और इसका उत्तर हमारे श्रोताओं ने सही दिया और उत्तर दिया माँ। बिल्कुल सही बात है, माँ ही है ना जो हमारे जन्म के पहले, यानी हर कोई हमारे जन्म के बाद हमें प्रेम करता है, लेकिन माँ होती है जो हमारे गर्भ में आने के बाद ही वह हमें प्रेम करने लग जाती है और उसी प्रेम के लिए हम उसे याद करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सभी सांस्कृतिक प्रश्नों पर गीतों पर चर्चा का समन्वय रहेगा। जन्म लेने से पहले माँ का साथ रहता है, किंतु जब वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो माँ है, अपने बच्चों को के बारे में कितना कुछ सोचती है, कितना करती है। उस आंगन में नन्ही सी चिड़िया की तरह उदकते हम कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, लाख पैसा कमा लो, पर अपना घर अपनी माँ हमेशा दिल में रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने भी। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, पर मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। ये बड़ा सुंदर सा बड़ा प्यारा सा गीत है। बस बता दीजिए, माँ के लिए इतना प्यारा लिखने वाले गीतकार कौन है, इस गीत को लिखने वाले गीतकार कौन है, ये नाम बस बता दीजिए। और अगर आपके मन में कोई पहेली आ रही है तो वो हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा।

अपनी माँ के साथ जाते हुए बच्चों को एक सुंदर सी घोड़े की टाप के संगीत के साथ रोशन ने संगीतबद्ध किया इस गीत को। मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज के साथ इसे गाया। दादी माँ फिल्म से लिया गया यह गीत है। और हमने आपसे पूछा था कि इतना सुंदर गीत रचा किसने, यह जरूर बताएं उस गीतकार का नाम। तो सच में इतने सुंदर गीत को रचने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को धन्यवाद बनता है। माँ के प्रति समर्पित हमारी भावनाओं को हम तक, हमारा वहां तक पहुंचाना। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है कि इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी, हमने वो रास्ता देखा है। अरे वाह, इसके साथ ही हमने आपसे जो प्रश्न पूछे उसमें हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि फिल्म दादी माँ का गीत है और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, कहते हैं तेरी शान से ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। बिल्कुल, माँ का, माँ के बिना तो ईश्वर भी स्वयं को ईश्वर कहलाने के लिए इस धरती पर नहीं आ सकते, उन्हें भी उनकी आवश्यकता होती है। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि हाथ दुआ वाले सदा रहते हैं सदा सर पर, तू है तो अंधेरे पथ में भी सूरज की ज़रूरत क्या होगी। बहुत खूबसूरत गीत हम सब ने अभी सुना और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हमारे बीच में लिखी हैं और कुछ पहेलियां लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, उन्होंने बताया 3 तीतर। चलो बढ़िया बात है। पर हमारे एक श्रोता ने एक और प्रश्न छोड़ दिया है, अब उसका उत्तर मुझे भी नहीं पता, शायद आपको पता हो, और अगर सही होगा तो हमारी ये श्रोता आपके उस पर जाकर अवश्य बता देंगी कि आपने सही उत्तर दिया या नहीं इस पहेली का। काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे में छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अब ये प्रश्न आपके बीच में हमने हमारी श्रोता का रख दिया है कि काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। चलिए इसका उत्तर आप ढूंढिए। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली पहेली की तरफ। फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, आज की इबारत में हमने लिखा है कि फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, गुनगुन मेरा गीत ना कोई शब्द पुराना, शाम वसन ओढ़े फिरूं मधु की खोज में, बताओ कौन हूं मैं जिसका घर है हर बाग में। हम जानते हैं आप सही उत्तर दे चुके हैं और इसका उत्तर आपने दिया है बहुत अच्छे से, भंवरा। और जब भंवरे की बात चल रही है तो हमने हमारी श्रोता की वो पंक्तियां भी आपको सौंपी हैं और ये गीत भी हम आपको सौंप रहे हैं। बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन हैं, और अगर आपकी कोई पहेली है जो बड़ी सुंदर सी है तो हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा।

0: देखिए, हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत, और इस बढ़िया से गीत में हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा इसके बारे में, और आपने बड़े अच्छे से उत्तर हमें दिए हैं। हमारे श्रोताओं के उत्तर सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है, पढ़ते पढ़ते बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत सारी पहेलियां हमारे बीच में आ रही हैं, और उन पहेलियों के साथ बड़े प्यारे जज्बात भी आ रहे हैं। और हम ये जो गीत सुन रहे थे वह आज और कल, आज और कल फिल्म से सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के पोल, और जो प्रश्न है वो शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। इसके साथ ही हमने आपसे पूछा था, तो हम आपका उत्तर काले रंग की परछाई है, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए देखते हैं उत्तर सही है या नहीं, आप अवश्य देख लीजिए। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन उस गीत के पहले हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से लिखा है कि फिल्म कल आज और कल का सदाबहार गीत भंवरे की गुंजन हसरत जयपुरी के द्वारा रचित, किशोर कुमार द्वारा गाया गया एक मधुर रोमांटिक गीत है। बिल्कुल सही बात है, आपकी प्लेलिस्ट से भी गाने बच जाते हैं, इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है, उसका भी आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता ने लिखा है, दो लड़के लड़ते जाएं, उनका खेल बढ़ते जाए। इसका उत्तर उन्होंने बताया, स्वेटर बुनने वाली दो सलाइयाँ। हाँ, माँ जब स्वेटर बुनती थी तो कुछ ऐसे ही बुनती थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से उसका उत्तर भी दिया है, हमने जो आपसे पूछा था। हमारे एक और श्रोता ने बोला है कि एक गुफा में 32 चोर हमेशा करते आपस में शोर, बताइए इस पहेली का उत्तर। तो इस पहेली को उत्तर सहित हमारे कौश होता पहले ही बता चुके हैं, इसका 32 चोर होते हैं हमारे दांत। इसका उत्तर हमको पता है। इसके साथ ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसका उत्तर सहित बता दें, क्योंकि हम तो बड़े अनभिज्ञ व्यक्तित्व हैं, तो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, वो कौन है जिसकी परछाई नहीं होती रास्ता। अच्छी बात है, ये भी बढ़िया बात आपने कही है। इसके साथ जब हम आगे बढ़ें तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहेली पूछना और समझना एक दिमागी विकल्प है, आज के समय में हर इंसान पहेलियों में उलझा हुआ है। बहुत बढ़िया, हमारी एक श्रोता की एक संवेदना हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए, जो पिछले गीत के लिए उन्होंने की थी कि हजारों गम हो मेरी जिंदगी में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां माँ साथ हो वहां कोई भी दुख ठहर नहीं सकता, लिखूं जो माँ पे तो स्याही कम पड़ जाए, वो एक हस्ती है जिसके आगे सारा जहान भी झुक जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे श्रोता ने एक बढ़िया सी पहेली लिखी है कि वो कौन है जो पूरे गांव में घूमती है पर मंदिर नहीं जाती, उन्होंने लिखा चरण पादुका। कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, कौन होता है बताइएगा जरूर। इस पहेली का अर्थ आपको बताना है, उत्तर बताना है, बचपन की पहेली है जो हम सुनते आए हैं, कटोरे के अंदर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, इस पहेली का उत्तर आप बताइए। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, ये गीत के साथ इसकी पहेली भी हम आपको सुनवा देते हैं। तो ये पहेली है कि नन्नी सी मैं उड़ती जाऊं, चीची करके गीत सुनाऊं, पेड़ों पर मैं घर बनाती, पूछो कौन कहलाती। और इसका उत्तर है चिड़िया। जब चिड़िया पर मैं आपको ये सुंदर सा गीत सुनवा रही हूँ, और इसके पहले मैंने भंवरे पर आपको गीत सुनवाया, हम मान लें तो मधुमक्खियाँ और जो भी फूलों का रस चखती हैं उन सबको अगर इसमें हम जोड़ लें तो ये सब जीव खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं विचार कीजिएगा। और गर्मियों के दिन है, चिड़ियों के लिए दाना पानी तो जरूर डालिएगा। गायक का नाम बताइएगा।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: है जो हम सुन रहे थे, ये फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से है। हसरत जयपुरी के बोल हैं, दत्ताराम का संगीत है, और हमने पूछा था कि आवाज़ किस गायक की है, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे हैं, इस गीत के साथ एक शिक्षा तो मिलती है कि ये छोटे छोटे जीव हैं और हम इतने बड़े बड़े मनुष्य, छोटे जीवों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर विचार करते हैं और उन जीवों को बचाते हैं। क्योंकि अगर ये जीव नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये प्रकृति, ये विज्ञान कहता है। तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारी पहेलियां भेजी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने पंजाबी कहावत पहेली भेजी है कि गुड़िया विच तकतेनी परने सड़ गए थे कुआरे अख्तेनी, शादी की इच्छा रखने वाले ऐसा कुछ कहते हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने पहेली भेजी है, बूझ मेरा बुझक का सुंदर लाल मेरा सक का सुंदर लाल मेरा भाई मैं सदा कुछड़ पाई। इसका उत्तर उन्होंने घड़ा या मटका दिया है। हर भाषा में अपने अपने अलग अलग बात आ जाती है ना। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लिखा नहीं जाता पर पढ़ा जाता है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, आंखें इसे देखकर नम हो जाती हैं, बताओ क्या है जो दिल को छू जाता है। तो उन्होंने इसके दो उत्तर दिए हैं, पुरानी यादें या एक भावुक पत्र। बहुत बढ़िया, बड़ी मजेदार सी बातें भी आई हैं। ना खून का रिश्ता है ना घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ। और इसका उत्तर उन्होंने दिया है, सोशल मीडिया। जी, इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं रही है, इसके साथ ही जीवन चलता नहीं है, जीवन रुक जाता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, पर चल सकता है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, ये जो जेब में रहता है काम में आता है, बाजार जाके शॉपिंग भी करवाता है, आजकल वो स्मार्टफोन भी है, फोन भी हो सकता है, भाई इसके बिना कहाँ रहा जाता है। जी, आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं। एक पहेली है जो हम आपको सौंप रहे हैं, और हमने इसके पहले आपको सौंपी थी कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो आपने सही उत्तर दिया नारियल। अब एक पहेली सौंप कर मैं बस आपको एक संदेश सुनवाने वाली हूँ। वो पहेली है, हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका एक हिंट दे देती हूँ, अरे बड़े शौक से इसे कोयले पर सेक कर उसमें नींबू और दही घी लगाकर नमक लगाकर हम बड़े चाव से खाते हैं। बताइएगा, तब तक सुनिए ये संदेश।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफर। और सुरीला सफर कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत सारी पहेलियां, और अगली पहेली आपको सौंपने से पहले पिछली पहेली जो हमने यूं ही बूझी थी, उस पहेली का हरी थी मन भरी थी, इस पहेली का जो उत्तर हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर आपने दिया है भुट्टा। बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके साथ ही हम कई सारे और प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न दिया है, मुझे पहेली बस का उत्तर पता नहीं होता है, तो मैं पहेली बताती हूँ, मैं भी थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ। जी चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहाँ जितने ज़्यादा पेड़ पौधे फूल होते हैं वहाँ चिड़िया पंछी भंवरे तितलियाँ दिखते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना सारी समस्याओं, बहुत सारी समस्याओं का हल है। आपने बहुत अच्छा हल बताया है और हम सबको ये हल मानना चाहिए। और अभी मौसम भी आ रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम के कुछ 10-15 दिन पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि ज़मीन जो है वो सूख जाए, एक कीट रहित हो जाए, और उसके बाद जब वह गड्ढा सूख जाता है 10-15 दिन में तो फिर उसमें पेड़ लगा देना चाहिए और पानी डाल देना चाहिए, और धीरे धीरे बारिश आएगी, बरसात स्वयं उसको पानी देती रहेगी और 4 महीने में वो हरा भरा हो जाएगा। तो अभी ये काम कर सकते हैं, मौसम आ गया है, गड्ढा खोदने की शुरुआत कर दीजिए।

खामोशी और मौन दोनों ही एक श्रोता ने पूछा कि अच्छा आपने इसका उत्तर दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बोलते ही क्या टूट जाता है, तो उन्होंने कहा खामोशी और मौन टूट जाता है। बिल्कुल सही। चलिए अब हम चल रहे हैं कि अब बड़ी खूबसूरती के साथ में अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगली जो इबारत में से जो कवि पहेली है वो हम आपको सौंप रहे हैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। और इसका उत्तर है घर। और सुनते हैं ये घर का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपके जो पहेलियों के किस्से हैं, या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है, या आपके परिवार में सबसे बढ़िया पहेलीकार था कौन जो बड़ा सताता था, जरूर बताइएगा।

हम सुन रहे थे ये गीत जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज़ में, जावेद के बोल और जावेद अख्तर के बोल और कुलदीप सिंह के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि ये गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपने यहाँ पर दिया है। और इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले जो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाई हैं, संदेश भेजे हैं, वह तो हमें आपको सुनवाने ही हैं। तो हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी, दीप्ति नवल, फारूक शेख, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिल्म साथ साथ, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं, घर वो जगह है जहां आकर हमें सबसे ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है, सुरक्षित महसूस करते हैं और घर चाहे बड़ा हो या छोटा हमें आश्रय देता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज भी लोग रिश्ता करने जाते हैं तो घर देखते हैं, कैसी बड़ी बिल्डिंग हवेली, वर नहीं देखते पर वर के खूबसूरत बलवान कितना कमाता है, विचार क्या है ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया। और हमारे श्रोता ने, हमने भुट्टे के बारे में पूछा था, उसे छल्ली भी कहते हैं, मक्की भी कहते हैं, अरे वाह इतने सारे नाम हैं भुट्टे के, हमें भी पता पड़ गए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से चिड़िया या गौरैया को कम देखा जा रहा है, हमारे घर में चिड़िया का एक जोड़ा जहां हम दाना डालते हैं आता है, पिछले कुछ महीनों से दो जोड़े आने लगे हैं, उनके लिए मिट्टी का घर टाका है छज्जे पर और आज ही एक चिड़िया का जोड़ा उसका मुआयना कर रहा था, आशा है कि घर में घोंसला बनाए और उनकी संख्या बढ़ जाए, फिर से उनकी चहचहाट से मेरी आँख खुले और मेरा दिन खुशनुमा हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बिहार में जब लड़की की शादी होती है तो मायके में ही लड़का लड़की कोहबर में बैठने के लिए लाया जाता है, तब घर की सालियां दरवाजे से को घेरती हैं और दूल्हे राजा से गाने की कुछ लाइनें या कुछ पहेलियां पूछती हैं, पहले तो दूल्हे राजा गड़बड़ाते हैं, गाने की दो लाइन गा देते हैं, फिर उन्हें शगुन भी देना पड़ता है, ये सब प्रेम की बातें हैं ना। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में रीत के बहुत से घर बनाते थे, जब दो मंजिला घर बन जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और वो दो मंजिला घर भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होता था, और टूट भी जाता था तो हम फिर से बनाते थे, टूटते नहीं थे, है ना। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जितना पास आए उतना कम दिखाई दे, और इसका उत्तर उन्होंने बताया, अंधेरा। आहा क्या बात है, एक बचपन वाली पहेली भी हमारे पास में आई है, एक खड़ी एक पड़ी एक चमाचम नाच रही, बताओ कौन, और उसका उत्तर है रोटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। ये हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं। और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ, और वो जो पहेली है बड़ी सुंदर सी है, और इन पहेलियों की स्मृति दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं बचपन या हम अपने वो दिन जी रहे हैं जो हमने आज की तकनीकी युग में कहीं छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं, और हमने हमारी जो इबारत है उस इबारत में अगली पहेली लिखी है, जेब में रहता काम ना आता, जेब में रहता काम में आता, बाजार जाकर चीज दिलाता, सबको मेरी होती चाह है, बताओ मेरा नाम क्या है, और इसका उत्तर है पैसा या रुपया या धन। जी बिल्कुल, सबको चाहिए होता है, इसके अलावा इसके बिना कुछ काम होता नहीं है, लेकिन जब यही पैसा लालच बन जाता है तो इस लालच के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो पैसा जो है वह एक सोच और समझ के साथ आना चाहिए, और सोच और समझ के साथ संभालना भी चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूँ, आप बताइएगा कि आपको लालच आया था कभी पैसा देखकर, किसी उम्र में तो आया होगा, किसी के पर्स में रखा पैसा देखकर

लगा होगा, काश इतना मेरे पास होता। अरे मैं अपना बता देती हूँ, मैं तो बचपन में सोचा करती थी कि काश कोई बड़ा रईस आदमी आए, वो हमसे कहे चलो हम तुम्हें इस शहर में ले चलते हैं, बड़ा बना देते हैं। बैठे बैठे बड़े बनने के ख्वाब सबके होते हैं, है ना, आपके भी होंगे, मेरे भी थे, पर बाद में सत्य का पता चला। चलते हैं अगले गीत की तरफ, बताइएगा ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे पापा कहते हैं फिल्म का यह गीत, और हमने पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया है, परंतु हम गीतकार जावेद अख्तर इसके हैं और राकेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है, और हमारे श्रोताओं ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि कुमार सानू की इस आवाज़ को हम सुन रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपको लालच किस चीज़ का है, तो हमारी श्रोता लिखती है, मुझे तो पति के पॉकेट से मिलने वाले पैसे का लालच आज भी है, जब भी उनके कपड़े धोती हूँ मेरी नज़र पॉकेट पर ही रहती है, कुछ सिक्के भी मिल जाए तो खुशी होती है, वो नोटों की गड्डी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, और ये तो हमारा अधिकार में भी आता है ना जी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। इसका उत्तर मुझे पता है, आपने उत्तर नहीं दिया था लेकिन मुझे पता है, आसमान। और मैं आपको अगली पहेली सुनाने से पहले एक पहेली दे रही हूँ, मैं हरी मेरे बच्चे।

काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे, मैं हरी मेरे बच्चे काले, है ना, और मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले। बताइएगा ये कौन है? मैं हरी हूँ, मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को खा ले। ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही अगली पहेली हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं, और अगली पहेली के साथ में जो अगला गीत है उस अगले गीत के गायक कलाकार का नाम भी आप बता दीजिएगा। हम आपके बीच में बस इस पहेली को पढ़ देते हैं। न खून का रिश्ता है न घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, हंसाए खिलाए दुख भी बांटे, बताओ कौन है इतना खास। और वो होता है दोस्त। चलिए इस दोस्ती के नाम ये गीत, बताइए गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना मोहम्मद रफी की आवाज का मैं था यह गीत। और आपने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उन सब संदेशों को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे, पांच भाई एक साथ घूसा मारता है भात भी खाता है, पांच उसके साथ हैं दोनों मिलकर करते हैं नमस्कार, बिल्कुल सही, और दोनों हाथ का पंजा इसका इन्होंने कहा है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, ये इनकी भावना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं जब भी लॉटरी वॉटरी की टिकट रखती है तो उनको लगता है कि विदेश यात्रा मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखिए लालच तो सबको होता है, पर ये लालच कोई थोड़ी सी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को अपन देख सकते हैं। अब मैं अंतिम पहली की तरफ जा रही हूँ। सागर जिसके चरण पखारे, हिमालय जिसका ताज कहाए, अनेक भाषाएं अनेक रंग, बताओ वह देश कौन सा कहलाए। और हमारे देश का नाम है भारत, भारत, भारत। ये अद्भुत देश जो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, और जिसका ताज, जिसके सर पर मुकुट है हिमालय जैसा, और जिसके चरण प्रतिदिन पखारे जाते हैं समंदर से, ऐसा देश वहाँ के अलावा और क्या हो सकता है। ये गीत मैं आपको सौंपती हूँ, और बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और पहेली वाला कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बड़ा मज़ा आया होगा मुझे ऐसा लगता है।

समय था जब खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाया करती थीं। फुर्सत के क्षणों में परिवार के साथ बैठकर बोलना, बतियाना, खाना पीना, हंसी ठिठोली, बातें करना, छत पर देर तक बातें करना, चांद सितारों को निहारना, त्योहारों की हलचल, इन सब में हमारे चेहरे पर खुशी और मुस्कान खिली रहती थी। साधन उस समय सीमित थे, लेकिन प्रेम और अपनेपन की मिठास घुली रहती थी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमारे मन में खुशी कम होती जा रही है। लेकिन खुश रहना कितना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आज हमें ये सोचने की फुर्सत नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो मन में जैसे तरंगे आती हैं, मन में ऊर्जा पैदा होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन उड़ जाता है मुक्ताकाश की ओर, और पांव जमीन पर नहीं पड़ते।

आज पहले जैसे खुश न रहने का कारण ये है कि जीवन की रफ्तार, जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। हर कोई व्यस्त है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार की तरह हमें बहुत सारी उपलब्धियां तो देता है, तो दूसरी ओर हमारे अपनों से हमें दूर करता जा रहा है। एक दूसरे के लिए हमारे पास समय कम होते जा रहे हैं, साथ रहते हुए भी मन की दूरी बढ़ती जा रही है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आगे बढ़ने की रेस मन को थकाने लगी है। रिश्तों में आत्मीयता और दिलों की चमक, मन की मिठास धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी हैं।

खुशी हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमसे अलग नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम घर, बाहर, समाज और अपने कार्यस्थल पर अपनी मुस्कान और अपनापन जरूर बांटें, अपनी संवेदनाएं बाहर निकालें, सबका आदर और सम्मान करें। अपनी संवेदनाओं को कभी कुंठित नहीं होने देना चाहिए। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी के सुख दुख को बांट लेना, सहयोग के दो शब्द कह देना, मीठे बोल बोल देना, ये सभी चीजें जीवन को जीवंत बनाए रखता है। तब हमारे स्वयं के चेहरे पर भी सुकून और खुशी लौट आती है, और जब हम खुश होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड खुश होता है। पेड़ पौधे खुशी से झूमते नजर आते हैं। खुश रहने के नियम बताए गए हैं, सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य का ध्यान, दूसरों से तुलना न करना, वर्तमान में जीना, माफ करना और संतोष करना। इन नियमों का पालन मानसिक शांति जीवन में चेतना लाती है। जीवन खुशियों से भर जाता है और जिंदगी को पूरी तरह से प्यार कर पाए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं

0: महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस

0: कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे बड़ा आदमी फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं दाग फिल्म से यह गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम सुन रहे हैं।

0: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में, गुलशन बावरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है घराना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

हम सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मुकेश की आवाज में महेंद्र नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी बहुत सारी सखियों सहेलियों और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार
2: और मेरा भी अपने सभी जो भी सखियां हैं जो भी सखा हैं सभी सभी को सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार
1: आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं
2: जी।
1: तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही
2: बिल्कुल
1: बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं। तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम
2: बिल्कुल चर्चा और मौसम कोई भी हो पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें भी बताइए आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं आप खुद और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज के लिए। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत ज़िनिया पर्सी मास्टर जी की जो कि हैं संस्थापक हैं ज़िनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है।
1: बिल्कुल ये बात तो बड़ी कहते हैं ना कि एक रोचक भी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है।
2: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहे बहाना बना रहे, लेकिन आप कैसे कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है
1: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके आपको सुरक्षित रखने के लिए।
2: बिल्कुल
1: बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम
2: गुठलियों के दाम, यानी वैसे भी आम का मौसम है ना आम खाए जा रहे हैं।
1: हाँ तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे।
2: बिल्कुल और चंचल जी मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोता है सखियां हैं जो भी सखा हैं कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
1: बिल्कुल सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं लेकिन आप कि जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम
2: और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए।
1: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम,
2: गीत सुनने से
1: जी।

0: तो कोरा कागज यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी, लेकिन अब हमें संदेश मिलते हैं हमारे सुनने वालों के।
1: और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष, यानी अपने सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता,
0: हम बात करेंगे ज़ीनिया पर्सी मास्टर के बारे में।
1: जी, तो ज़ीनिया पर्सी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं। और ज़ीनिया एक व्यवसायिक परिवार से आती हैं, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: ज़ीनिया पर्सी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियोन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्ज़ी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
0: और इससे पहले ज़ीनिया इवेंट्स का, इसे पहले ज़ीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी ज़ीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया। और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्ट

0: कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है
1: जी। उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है।
0: और उनका काम वी इन्वाइट यू यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद ले और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं
1: जी। वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
0: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में और आप सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल, पानी, और देखो पानी का जो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हरेक की जरूरत है। कहते हैं कि जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए।
1: और जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी हमने प्रगति करी, वो सब कहां, सिर्फ नदियों के किनारे बसी
0: जी,
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सोचिए, ये हमें जागरूकता का विषय भी है कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है, जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही पानी जरूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं, जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहाँ पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदर के किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं। लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं और मतलब दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहाँ पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना, जल बिन जरूरी उपयोग, बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
0: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है
1: जी।
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, भाई अगर हमें घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है, और पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल, और चंचल जी सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है
0: जी,
1: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोची कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें, जैसे छोटे बच्चे हैं

0: अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए सिखाइए, अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
1: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें, कपड़े बर्तनों को धोया पानी पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें, मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी, और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी ज़रूर से रखें, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं, इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते हैं।
0: बहुत ज़रूरी है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आँखों में आँखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है और जहाँ फिर प्रेम का अंकुर पर अपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
1: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता, इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है।
0: जी।

तो अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का

0: उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे जैसे करके टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के मतलब जो उन्होंने लिखी है इस तरीके की चीजों का पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है और मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश।
0: बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल चालू है, यहाँ चल रहा है, उधर काम चल रहा है उनका, तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये सबकी जिम्मेदारी है।
1: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, दो घूंट पानी पिए और पानी बाकी फेंक दिया,
0: आधा ग्लास पानी पीते हैं और आधा फेंक,
1: पीने लायक पानी होता है, कितना कीमती पानी है उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
0: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है, तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी को भी किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियां धोई तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
0: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो इस तरीके की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा और बहुत जरूरी है अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा
0: क्या बात
1: तो इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी।
0: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में, तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जैसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया। इस तरीके से आप पानी की बचत ज़रूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती। जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहां चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी वहां पर होता है। बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी, तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती है, बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी दो दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से, समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे। उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं गीत।

0: जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उसे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उसे भी आपको मुनाफा मिला, दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: गुठलियों के दाम इसने ले लिए और खाली उसी ने नहीं ली, पेड़ लगाने से सबको फायदा हुआ तो बहुत अच्छी चीज है ये।
0: तो ये तो सिर्फ कहावत है, लेकिन बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम तो इन दिनों हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई तरीकों से कहा जाता है।
0: दो का जाम क्याम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों
1: बिल्कुल
0: का।
1: और व्यवहारिक जीवन में इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी तो सच में एकदम सही बैठा कि उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है। दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाए भाई अपने बहाने बनाने के लिए, जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत ज़रूरी काम आ गया, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है,
0: क्या बात है?
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके, ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सके। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहां करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए बचने के लिए अपनी गलतियाँ छिपाने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है।
1: बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए ये बहाना है।
0: बिल्कुल, बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी ना कभी, बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है,
1: अक्सर होता है ऐसा। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी है वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बना है, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने नोक झोंक प्यार और स्नेह है तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम का हाथ बटा देते।
0: हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है, मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा, और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
1: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
0: जी,
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई, मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था, सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई, शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी, तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा अरे यार मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, सच कहूं तो अरे हां मैं तो भूल ही गई थी या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं, मैं करती हूँ अक्सर, हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
0: तो चलो अब एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती तुमने कभी कोई बहाना बनाया है, बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: हाँ, ये जो है ना फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं भाई फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था,
1: बिल्कुल
0: ये भी बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं, इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं, और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है, मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक हमारी श्रोता है जो लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ, इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ, इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई, ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा। लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा प्रोग्राम।
0: हाँ, अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए।
0: तो और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज़ लानी पड़ती है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी है उन्होंने लिखकर भेजा है। कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी, बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे, यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भी तो सुन लें गाना,
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा, इसलिए ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था,

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है 14वीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफ़र है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा, हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से?
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज़ जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर लें तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत, मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
2: पूरे तो याद नहीं है। हीरुआ का साकारो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
2: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज, विच लिटरली चेंज माय लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के बाद एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज़्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कह रहे हैं।
2: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में। तो हम हैदराबाद गए तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे तो काफ़ी शोर शराबा दो तीन मोटरें जा रही थी लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें

0: एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है तो वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके ज़रिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप। कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली?
0: CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो CID और प्यासे की बातें करें उसके पहले हम वेदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: वह बहुत ही खूबसूरत गाना है और खास तौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। आपको याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीआईडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: हाँ जी।
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरुदेव साहब हाँ को कैसा डायरेक्टर मानती थी?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। इसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ।
0: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
1: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के। ये जैसे दिल की आवाज है, और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आपकी कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
0: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने चाहिए।
1: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे, और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी।
0: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज़ के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
1: हाँ
0: है, और इसकी मेलोडी जो है आज तक
1: हाँ
0: बहुत दिल को छू लेने वाली है।
1: बिल्कुल,
0: क्यों नहीं ये गाना सुना जाए?
1: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज़्यादा हैवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं, तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत तो दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली,
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म, फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा विधि जी, साहब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
1: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन ज़रूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज़ को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
0: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी?
1: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं, तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज़ को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए, लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल्स देखी, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज़ को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
0: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
1: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात ख़त्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आ कहने लगे देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी। तो गुरदत्त उन्होंने जाके गुरदत्त जी को बताया तो उनको ताजुआ, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं चौदहवीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंगअप नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल, डिफरेंट डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अबरार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूँगी, तो इसलिए मैंने किया।
0: तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो।
1: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया,

0: अब इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी, वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे CID बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूँगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मज़ा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूँगा, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़बान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो वो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा, यू नो, और ख़ासकर वो लखनऊ के हैं उस तरह से, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन ज़रूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
1: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय लिया जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी भी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
0: देव साहब के साथ में कैसी ट्यूनिंग थी आप?
1: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो CID में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और बहुत अच्छा था उनके साथ।
0: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
1: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर, लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे, देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, तो ठीक है। हो एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है, मैंने कहा हाँ फॉग तो है मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है, तो बोले मैं चश्मा लगा था, तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया, तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेडरेसर को पीछे बैठने दो और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह, मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता। मैंने कहा

0: तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है। और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा, आहिस्ता चलाइए। और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ, इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे। तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी, वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुँच गए। तो दैट वॉज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप।
0: खोया खोया चांद।

0: वेदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए। वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना

0: मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है. मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है. तो बोले दो चार बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना. मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा. खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं.
1: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं. वेला जी, उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूजी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने. वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है. तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं अभिनेत्रियाँ डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पर फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी.
0: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए. और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था. क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने CID का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था. फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है. वो कैरेक्टर वैसा नहीं, तो वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी. रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं. मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है, और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है वॉट एवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है. फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है. और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है. ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम, ऑब्वियसली. तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा. तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया, जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए. तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए. फिर भी मेरे ख्याल से गलत ही, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा. मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा.
1: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा.
0: Exactly.
1: आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला.
0: बिल्कुल सही है.
1: कमल के लिए भी मिला.
0: बिल्कुल.
1: कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
0: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था. वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर. सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन थे, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था. मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ. इट्स ओके.
1: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी.
0: हाँ.
1: सुनील दत्त साहब के साथ में.
0: हाँ जी.
1: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए, फौजियों के साथ में बीच में जाकर के खूब काम किया. उनके साथ में, उनके ट्रूप के साथ में जाती रही ना.
0: तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का. तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख

0: भी होता था यू नो, और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए। फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
1: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले ही हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है। उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
0: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था

0: एक और आपकी बड़ी ऑफ बीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने ही उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा उषा और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से, जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं, उसमें उनको गूंगा बना दिया गया था। और उसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मज़ा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी साथ हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही, और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज़ ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो वो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहे थे, बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बेचारे का, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना

बहुत मुश्किल होता है. अगर इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और डायलॉग साथ में मैंने कहा उसके बाद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है जब टॉकिंग डायलॉग आई मीन रोल मिल जाएगा मेरे ख्याल से ही विल डू वेरी वेल. तो

0: आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी
1: हाँ
0: माँ का किरदार भी अदा किया है।
1: हाँ बिल्कुल
0: कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती
1: हाँ
0: थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
1: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे जया सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ़ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही है, मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
0: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
1: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कमर थे। एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े ज़ोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप ज़रा बाहर ताज़ी हवा खाइए। फिर के लिए तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कस के मार तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट ख़त्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक, फिर 6 तमाचे पड़ेंगे उसको, तो हंसने लगी। बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
0: यहाँ हम रेशमा और शेरा जिसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का?
1: रेशमा का वो एक मीठी सी चुबन, एक
0: जी हाँ जी
1: हाँ, बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगर,

0: वहीदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देके ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना. वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहाँ सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते हैं, नहीं अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है, नहीं मुझे बच्चे चाहिए. अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं, कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की. सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती है, वो बन जाती है. फिर कहती है, नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहते हैं, नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे. तो ये चीज़ जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील, जब आप मूवी देखते हैं, कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
0: देव साहब के साथ में, और जो आपके अनुभव, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और. आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे. एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं. कैसे थे वो?
1: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके. तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए, तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे, मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा. मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कर लेंगे.
0: इतना हक
1: हाँ हक जता रहे थे जैसे. तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती. जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से. तो ही इज़ वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर,
0: और एक एनर्जी से भरे हुए लगते हैं
1: बेहिसाब. मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ, क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे. वो उतने, जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे, तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे, तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे, ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए. फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई will call you ever ready battery.
0: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है, और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका जज्बा अभी भी वैसे ही है, और फिल्में बनाए जा रहे हैं. तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
1: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है, हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं. मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं, वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है. सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनके फैमिली से, वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया. हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनोदो में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम.
2: दोस्तों, वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें. आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, सिधमा, बदौली, जवाखान, मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ागांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडीह, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिला

0: असपुर चरईमारा रानी कोम्बो खड़ामाचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी चट्टानपारा कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल धरमजयगढ़ बोरो बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये लुटान पुरुंगा बनहर औरानारा करोंधा जगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गठघोरा वन मंडल के एतमानगर पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई कोदवारी भूडूपानी कठमोरगा लालपुर परला चोटिया कापानवापारा खड़पड़ी बनिया झुनकीडी बांधापारा कुकरी कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 87 है। ये बंगूरसिया जुनवानी कशडोल बुलेकेरा चिमटापानी गया कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर पकरीद नवागांव कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर आप सुनेंगे झलकी। 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। हिंदी में समाचार शाम 6:00 और 6:10 पर सुनेगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत 6:20 पर प्रादेशिक समाचार हिंदी में, इसका अनुप्रसारण किया जाएगा रायपुर केंद्र से 6:45 पर। फिल्म संगीत का पुनः आनंद ले पाएंगे शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा किसानवाणी। दिल्ली से रिले विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनेंगे रात्रि 9:00। 8:20 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीत। 9:25 पर दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आर्थिक विकास थीम पर विशेष कार्यक्रम। विविध संगीत रात्रि 10:00 और 10:30 पर सुनिएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश अनुरोध तरुणों की पसंद पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है श्रोता रायगढ़ @gmail.com।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नयागढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं झलकी नाटक प्रहसन के कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटिका, विश्व नाटिका का नाम है सिद्धांत, लेखक वेदांती महर्षि, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। तो आइए सुनते हैं नाटिका सेवा का दर्द।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है नाटिका गंगा प्रसाद माथुर। तो आइए सुनते हैं नाटिका।

0: अरे भाई कहाँ गए सब लोग? घर में कोई दिखाई नहीं देता।
1: अरे कौन हो भाई? मैं यहाँ हूँ बरामदे में।
0: अरे लाला जी आप यहाँ बरामदे में? आप ठहरे दमे के मरीज। दमे के मरीज को सर्दी से बचकर रहना चाहिए, और आप सर्दी के दिनों में इस खुले स्थान पर।
1: सब समय का फेर है भाई, पर कहो कब आए?
0: बस सीधा गांव से ही चला रहा हूँ, लेकिन आपके मुख से ये नई परिभाषा सुन रहा हूँ। आप तो कहा करते थे समय आदमी का गुलाम होना चाहिए, आदमी को समय का गुलाम नहीं।
1: अरे चौधरी वो जवानी की बातें थी, बुढ़ापे में शरीर भी आदमी का साथ छोड़ता
0: है। बुढ़ापे को क्यों दोष देते हो बाबू साहब? सच्चाई ये है कि रिटायर होते ही आपके परिवार वालों ने फालतू सामान की तरह आपको बरामदे में पटक दिया।
1: ये क्या कह रहे हो चौधरी? कोई सुन लेगा तो समझेगा कि मैं अपने बहु बेटों की तुमसे बुराई कर रहा हूँ।
0: लोगों के पास कान ही नहीं आंखें भी होती हैं बाबू साहब। आपके ये मैले कपड़े, कई दिनों की बड़ी हजामत, खांसी से फूला उखड़ा हुआ सांस, इतने बड़े मकान मालिक होते हुए घर के बरामदे में ये साधारण चिखाट क्या लोगों को दिखाई नहीं देता?
2: दादाजी खाना लाई हूँ।
1: अरे इधर स्टूल पर रख दे बेटी, थोड़ी देर में खा लूंगा।

0: सुन, अरे गांव से चौधरी काका आए हैं, अपनी माँ से कहना कि एक कप चाय।
1: अरे रहने दे बेटी, बहुरानी को कष्ट देने कोई जरूरत नहीं है, होटल से चाय पीकर आया हूँ।
2: मैं जाऊँ दादाजी?
1: हाँ बेटी तुम जाओ, ये पानी जैसी दाल सूखी रोटियाँ यही है आपका भोजन बाबू साहब।
0: बुढ़ापे में भारी भोजन हजम तो नहीं होता ना चौधरी?
1: बस बस बाबू साहब रहने दीजिए, आयु में आपके बराबर ही हूँ, बच्चा नहीं हूँ जो बहक जाऊंगा। मेरे पास जो कुछ भी है आपके प्रताप से है, आपने मुझे कृषि विज्ञान के नए नए चमत्कारों से अवगत कराया, उसी के बदौलत आज मेरी जमीन सोना उगल रही है, मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा।
0: मैं जानता हूँ चौधरी, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझे सर आंखों पर रखोगे, लेकिन भाई मेरे बच्चों की इज्जत का सवाल है, दुनिया कहेगी कि दो बेटों के होते हुए।
1: आपको अपने बेटों की इज्जत का ख्याल है, लेकिन आपके बेटे, खैर जाने दीजिए, आप मेरी आदत को जानते हैं, अगर हट पकड़ लूं तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। एक शर्त पर आपको यहाँ छोड़ सकता हूँ।
0: कैसी शर्त?
1: वो शर्त आपके कान में कहूंगा।
0: नहीं नहीं चौधरी नहीं, ये पाप है।
1: पाप उनका भागीदार मैं हूँ, कभी भगवान ने हिसाब मांगा तो आपके भगवान को जवाब मैं दे दूंगा।
0: लेकिन
1: लेकिन रहने दो बाबू साहब, मुझे अपना काम करने दो, बड़ी बहू आ रही है। मैं भी पका आम हूं बाबू साहब, न जाने कब दाल से अलग हो जाऊं। अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए, मेरे बाद मेरे बच्चों की नियत बदल गई तो मैं स्वर्ग में भी मुझे चैन नहीं मिलेगा।
0: अब मैं तुमसे क्या कहूं, शरीर के साथ साथ मेरी समझ भी साथ छोड़ रही है।
1: आपको कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, आपके सुख के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। अभी तो मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। राम राम।
0: राम राम चौधरी।
2: अजी सुनते हो? सुनते हो जी?
3: ओहो, घर आए देर हुई नहीं और तुम्हारी शिकायतें शुरू हो गई। कब? आज फिर छोटी बहू से झगड़ा हो गया?
2: ये बात नहीं जी, आज तो एक नई खबर है।
3: अच्छा,
2: आज चौधरी निहाल सिंह आए थे।
3: तेरे की खोदा पहाड़ निकला चुहा। अरे ये भी कोई खबर है? चौधरी बाबूजी के लंगोटिया यार हैं, अक्सर आते रहते हैं।
2: तुम्हें तो हर बात को हंसी में उड़ा देने की आदत है। अरे पूरी बात सुनी नहीं और लगे अपना फैसला सुनाने। सुना है बाबूजी की कोई अमानत चौधरी के पास धरोहर के रूप में रखी है।
3: सब बकवास है, मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ जमा पूजी के नाम पर बाबूजी के पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा सुनो, तुम अपनी सपनों की दुनिया को छोड़कर रसोई घर में जाओ और मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना कर लाओ।
2: ओफो, अरे कोई दूसरा कहता तो मैं भी चौधरी की बात पर विश्वास नहीं करती। अरे लेकिन अपने कानों सुनी देखी बात को कैसे झुठला दूं? अरे तुम ही बताओ।
3: ओफो, मैं क्या बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
2: अब समझने समझाने का वक्त नहीं है, अभी जाकर डॉक्टर को लाओ और बाबूजी की दवा दारू का इंतजाम करो। अरे बेचारे कब से खांसी में बेहाल हैं।
3: मगर तुम तो कहती थी कि खांसी बुढ़ापे में।
2: अब जाओ भी, समय के साथ बदलना ही बुद्धिमानी की निशानी है, जानते हो सेवा से मेवा मिलता है।
3: ठीक है भाई, तुम्हें सेवा का दर्द उठा है तो इलाज कराना ही पड़ेगा। अच्छा कल दफ्तर से लौटते समय डॉक्टर को।
2: कल क्यों, अभी जाओ, शुभ काम में देरी क्यों। कल शाम को चौधरी साहब गांव लौट जाएंगे, अरे उनके जाने से पहले ही।
3: अरे बस बस बस, समझ गया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं।

0: पाए लागू बाबूजी।
1: अरे बड़ी बहू तुम बेटा राम ये कौन है?
2: डॉक्टर साहब है बाबूजी, आपको देखने आए हैं।
1: डॉक्टर? अरे बेटा बुढ़ापे में क्या देखना दिखलाना, बेकार डॉक्टर साहब को तकलीफ दी है।
2: अधिक बोलने से आपको खांसी उठती है बाबूजी, आप चुपचाप लेट जाइए। डॉक्टर साहब आप इन्हें भली प्रकार देख लीजिए, इनके आराम के लिए हम महंगी से महंगी दवा खरीद सकते हैं, खर्चे की आप बिल्कुल चिंता न करें। बुजुर्गों के नाम पर एक पिता का ही तो साया है हमारे ऊपर।
3: इनका सबसे बड़ा इलाज तो इस खुले स्थान से हटाकर कमरे में ले जाने से होगा। इस सर्दी के मौसम में बरामदे की हवा जरा कुछ इनके लिए।
2: उसकी आप चिंता न करें डॉक्टर साहब, हम अभी इन्हें अपने कमरे में ले जाएंगे।
3: और कोई खास बात तो नहीं है
2: जी?
3: ये दवाइयां मैंने लिख दी हैं, समय पर दवाई और अच्छी खुराक मिली तो ये 10-15 दिन में जवानों की तरह चलते फिरते नजर आएंगे। अच्छा भाई मैं चलता हूँ।
2: अच्छा आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये लीजिए आपकी फीस।
3: शुक्रिया।
4: बाबूजी, बाबूजी कहाँ हो?
0: बाबूजी हमारे कमरे में हैं चौधरी साहब, आप ऊपर ही आ जाइए।
4: आप यहाँ हैं बाबूजी? आपको बरामदे में देखा नहीं, मेरी तो जान ही निकल गई।
1: अरे तुमने सोचा होगा चौधरी कि तुम्हारे यार की खटिया उल्टी खड़ी हो गई।
4: उल्टी खटिया खड़ी हो आपके दुश्मनों की? मेरा नुस्खा इतनी जल्दी काम कर जाएगा इसका मुझे गुमान ही नहीं था। ये नवल धवल बिस्तर, टेबल पर रखी महंगी दवाइयाँ, टॉनिक, क्या ठाट है मेरे यार के।
0: चाय लीजिए चौधरी साहब।
4: अरे बहू मैं तो अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, मेरे लिए इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है?
0: इसमें कष्ट की क्या बात है, मैं तो चाहती हूँ आप रात्रि का भोजन भी यहीं करें।
4: भोजन फिर कभी कर लूंगा, आज और अभी गाड़ी पकड़नी है, जाते समय एक बार बाबू साहब से मिलने चला आया।
0: आप आते रहा करिए चौधरी साहब, आपके आने से बाबूजी को बड़ी राहत मिलती है।
4: मुझे जब भी मौका मिलेगा आऊंगा बहू, बाबूजी के राहत के लिए तो मैं अपना सर भी कटा सकता हूँ। तुम्हारी सेवा ने तो 2 दिन में बाबू साहब की काया पलट दी, भगवान तुम्हें सेवा का फल अवश्य देगा। अच्छा बहू चलता हूँ।
5: अजी सुनती हो, ये बड़े भैया और भाभी बड़े मनोयोग से बाबूजी की सेवा कर रहे हैं, ये यकायक इनके मन में सेवा का दर्द कैसे जाग गया?
6: चौधरी के पास बाबूजी की कोई कीमती अमानत रखी है।
5: अच्छा,
6: इसकी भनक बड़े भैया और भाभी के कानों में पड़ गई है। बाबूजी को खुश करके वो लोग चुपचाप सारा माल हजम कर जाएंगे, किसी को कानो कान खबर भी ना होगी।
5: ये तुम्हें कैसे मालूम?
6: तुम तो जानते ही हो बच्चों का मन शीशे की तरह साफ होता है। एक दिन बड़े भैया की लड़की मुन्नी को मैंने बहला फुसला कर सब जान लिया।
5: भाई विश्वास तो नहीं होता कि बाबूजी ने कभी हमसे कुछ लुका छिपा कर रखा हो।
6: वकील हो ना, सहज ही किसी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हो? भैया भाभी का बाबूजी के प्रति ये सेवा भाव बिना मतलब की तो नहीं जागा है।
5: भाई हम कर भी क्या सकते हैं?
6: जो भैया भाभी कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं, तभी भैया भाभी की चाल समझ में आएगी। तुम भी तो बाबूजी के बेटे हो, सेवा का अधिकार तुम्हारा भी तो है।
5: कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो, अभी बाबूजी के पास चलता हूँ।
1: अरे राधे क्या बात है बेटे, तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, खैरियत तो है?
7: हमारी खैर तो आपसे है बाबूजी, आप बीमार हैं और किसी ने हमें बताया तक नहीं।
0: लो और सुनो, अरे इतने दिन बाबूजी बीच आंगन में पड़े खांसते रहे और इन्हें खबर ही नहीं, शायद आप लोगों को बाबूजी की बीमारी के कार्ड का इंतजार था।
7: यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते थे भाभी साहिबा, इतने दिनों के बाद आपके दिल में बाबूजी के प्रति सेवा भाव कैसे जाग गया?
0: मैं, अरे जब तुम लोगों ने कोई परवाह नहीं की तो घर में बड़ी होने के नाते बाबूजी के प्रति मुझे सजग होना पड़ा।
7: आपकी इसी सजगता ने ही तो हमें भी अपने कर्तव्य का बोध कराया है, बड़े ही तो छोटे के पद प्रदर्शक होते हैं।
1: अरे भाई तुम लोग मेरे लिए आपस में झगड़ा फसाद मत करो, तुम लोग मिलजुल कर रहो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी।
2: तुम लोग लाहक बाबूजी को परेशान मत करो, सेवा करने वाले को कौन रोक सकता है, जिससे बाबूजी को आराम मिले हमें वही करना चाहिए।
5: क्यों बाबूजी?
0: लगता है
2: हाँ?
0: देवर जी को भी बाबूजी की अमानत की खबर लग गई है।
2: दीवारों के भी कान होते हैं देवी, फिर राधे वकील है, छोटी सी छोटी बात को भी गहराई से परखता है।
0: तुमने उनके साथ सहज ही समझौता करके मेरे सब किए कराए पर पानी फेर दिया।
2: सारा धन जाता देखिए तो आधा दीजिए बांट। और बाबूजी की कोई अमानत चौधरी के पास है, ये हमारी मृग तृष्णा भी हो सकती है।
0: वहम का तो कोई इलाज नहीं है,
2: हम सभी इस वहम के सहारे ही तो जी रहे हैं देवी।
0: बस बस बस, अब तुमसे बहस कौन करे, मैं चलती हूँ, बाबूजी को रामायण पढ़कर सुनाने का समय हो रहा है।
2: पिता की संपत्ति पर बड़े बेटे का अधिकार होता है, बाबूजी के दिल में ये बात अच्छी तरह उतार देना, समझी, मेरा नाम भी राम है।
0: सुनो बाबूजी अपने पलंग पर नहीं है।
2: क्या, कहाँ गए बाबूजी? बाबूजी कहाँ गए?
0: अरे भगवान जाने कहाँ गए, उनके पलंग पर ये पत्र रखा था।
2: क्या, कहाँ कहाँ है पत्र, दो मुझे मुझे दो।
7: अरे ऐसे गुपचुप क्यों पत्र पढ़ रहे हो भैया, जरा जोर से तो पढ़ो।
0: पढ़ो पढ़ो।
2: तुम ठीक ही कहते हो राधे, मुझे पत्र जोर से ही पढ़ना चाहिए।
0: पढ़ो जल्दी भाई, जल्दी,
2: जिससे सभी सेवा भावी सज्जनों तक

0: बाबूजी का संदेश पहुंच सके। लीजिए सुनिए।
1: पढ़ो।
0: मेरे प्यारे बच्चों, इस बुढ़ापे में तुम सबने जो मेरी सेवा की
2: उसका फल भगवान तुम्हें अवश्य देगा। मुझ गरीब के पास तो आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। दोस्ती की खातिर चौधरी ने इस घर की हवा में एक भरम का महल खड़ा कर दिया और मुझ दरिद्र तीन ही मानों को सड़क से उठाकर इस महल में बिठा दिया। इस महल में सब सुख आराम पाकर भी मुझे लगता था कि जैसे मैं कोई ठग हूं और तुम सब लोगों को ठग रहा हूं। चौधरी ने मेरे मुख पर अपनी सौगंध का ताला डाल दिया। मैं चुप रहने पर मजबूर था, लेकिन मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती रही कि मैं अपने सुख के लिए अपने ही बच्चों को धोखा दे रहा हूं। आत्मा के धिक्कार को अधिक दिन सहना अब मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए मैं ये घर छोड़ रहा हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। चौधरी के रचे इस नाटक से अगर कुछ सीख सको तो तुम्हारे हित में अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे आगे भी बच्चे हैं।
0: भगवान तुम सबको सुखी रखे। अलविदा तुम्हारा बाबूजी।
1: हाय राम!
3: अरे अरे क्या हुआ?
4: अरे इन्हें संभालो भैया, शायद भाभी को सेवा का दर्द उठा है।

सुन रहे थे नाटिका सेवा का दर्द, फ्रीक्वेंसी 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 5:25 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा चिंतन भक्ति संगीत का कार्यक्रम। वंदना का समय होगा 6:10। कृषि चर्चा 6:30 पर। रामचरितमानस का प्रसारण समय होगा 6:40। 6:50 पर हम आपको सुनवाएंगे देश गान। फिर गीतों का कार्यक्रम। चित्रपट संगीत का वक्त होगा संध्या सुबह 7:05 पर। 7:35 पर सुनिएगा प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर का वक्त होगा 7:45। सुबह 8:30 पर सुनिएगा फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण 9:00। प्रादेशिक समाचार 9:55 पर और 11:55 पर। सुगम संगीत 10:10 पर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण सुनेंगे दिन के 11:00 और उसके पश्चात 12:00 से शाम 5:00 तक। कल शाम 5:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम 5:10 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी 5:30 पर। हिंदी में समाचार शाम 6:00 6:10 पर। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 6:20 पर शाम 7:00 और रात्रि 8:30 पर। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा चौपाल। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा जिमीकंद की उन्नत खेती किसानों के लिए लाभकारी। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण 9:00। 9:25 पर रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर विशेष कार्यक्रम। फिल्म संगीत रात्रि 10:00 और 10:30 पर सुनिएगा गैर फिल्म

रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, युवा ऊर्जा, संघर्ष और प्रेरणा के इस मंच पे आप सबका स्वागत है। युवा सोच, जोश, सपनों और बदलाव की आवाज लेके एक बार फिर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट वर्षा युववाणी प्रोग्राम के साथ। तो चलिए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि 100 साल पुराने संघर्षों का आज से क्या संबंध, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आज भी कई समस्याएं हमें उसी तरह चुनौती देती हैं जैसे पहले देती थी। जैसे बेरोजगारी, पर्यावरण का संकट, सामाजिक असमानता, अपनी संस्कृति और पहचान से दूर होना और युवाओं में बढ़ती निराशा। ऐसे समय में एक युवा नायक का जीवन हमें रास्ता दिखाता है जिसने अपने समय की समस्याओं को चुनौती दी। उस युवा नायक का नाम है बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को झारखंड में जन्मे बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि अगर समाज को बदलना है

लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने देखा कि आदिवासी समाज अपनी जमीन, जंगल और अधिकार खो रहा है। उन्होंने केवल विरोध नहीं किया बल्कि लोगों को संगठित किया, उनमें आत्मविश्वास जगाया और अपनी पहचान बनाने का संदेश दिया, क्योंकि उस समय में अंग्रेजों की नीतियां और जमींदारों का शोषण लोगों का जीवन कठिन बना रहा था। उस दौर में आदिवासी समुदाय के लिए जंगल केवल संसाधन नहीं थे बल्कि उनकी संस्कृति, पहचान और जीवन का अहम हिस्सा थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने वन कानून बनाए और लोगों को उनकी जमीनों से दूर करना शुरू किया, तब विरोध की आवाज उठनी शुरू हुई। इसी संघर्ष के बीच बिरसा मुंडा एक युवा नेता बन के उभरे। उनकी बातों का लोगों पे इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कह जाना लगा। बिरसा मुंडा ने उलगुलान यानी महान जनक्रांति का नेतृत्व किया। उनका आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि अंग्रेजी शासन परेशान हो गया। हजारों युवा, किसान और आदिवासी समुदाय के लोग जुड़ने लगे, साथ ही क्रांति में जोर शोर से भाग भी लेने लगे। लेकिन दोस्तों, हर क्रांति की कीमत होती है। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को केवल 25 बरस की आयु में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़ने वाले इस योद्धा ने अपने पीछे ऐसा इतिहास छोड़ा जो आज भी प्रेरणा देता है। ये शहादत दिवस हमें ये सोचने का मौका देता है कि आखिर एक युवा ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बदलाव कैसे किया। इसका जवाब नेतृत्व, साहस और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी। उन्होंने दिखाया कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सपने और संघर्ष बड़े होने चाहिए। आज जरूरत है कि हम युवा उनके विचारों को केवल भाषणों तक ही सीमित ना रखें बल्कि अपने जीवन में अपनाएं, समाज के कमजोर वर्गों की आवाज बने, प्रकृति का सम्मान करें और अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य को भी समझें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का समय डिजिटल युग का समय है, अब पढ़ाई केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रही। मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स माध्यम बन चुके हैं हर घर शिक्षा का। ऐसे में ई पाठशाला पोर्टल ऐप अच्छे कोर्स, कंटेंट और ई बुक्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुका है। आपको बता दें कि ई पाठशाला एक डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म और ऐप है जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और NCERT ने मिलकर विकसित किया है। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मुफ्त में डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल में कक्षा 1 से 12 तक की सभी NCERT की किताबें डाउनलोड करने के साथ ऑफलाइन पढ़ भी सकते हैं, साथ ही अध्यायों को आसानी से समझने के लिए एनिमेटेड वीडियोस और ऑडियो क्लिप्स भी उपलब्ध हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज में ये सभी बुक्स उपलब्ध हैं। साथ ही TTS फीचर यानी

आप अभी तक इस प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर रहे तो एक बार जरूर देखें, साथ ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाके। आपके विषय परीक्षा टेस्ट नोट्स बनाने के लिए अच्छी खासी मदद आपको ई पाठशाला पोर्टल ऐप से मिल सकती है। दोस्तों, ये थी आज की चर्चा ई पाठशाला पोर्टल ऐप पे। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज है महीने का दूसरा मंगलवार, जिसमें क्रम रहता है एक ही कलाकार का। हम आगे बढ़ेंगे अपने क्रम में और जानेंगे कि आज किसकी बातें करेंगे हमारे क्रम में। उससे पहले आपको सुनवाते हैं इरशाद कामिल का लिखा फिल्म मौसम का ये गाना। इस गीत को गाया है शाहिद माल्या ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

सभी श्रोता साथियों का स्वागत है आज के क्रम एक ही कलाकार में, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिन्होंने अपने अलग अंदाज, फैशन और फिल्मों के जरिए खास जगह बनाई। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सोनम कपूर। 9 जून 1985 को जन्मी सोनम कपूर मशहूर अभिनेता अनिल कपूर की बेटी हैं। खूबसूरती और अदाकारी जैसे इन्हें विरासत में मिली। फिल्मी परिवार से होने के कारण बचपन से ही सोनम का जुड़ाव सिनेमा से रहा। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2007 में फिल्म सांवरिया से की। इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया। पहली फिल्म से उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन सफलता का सफर आसान नहीं था। इसके बाद 2009 में दिल्ली 6 के गानों ने इन्हें विशेष पहचान दिलाई। अभिषेक बच्चन के साथ इनकी जोड़ी देसी अंदाज और गानों को लोगों ने खूब पसंद किया। दोस्तों, आगे जानेंगे सोनम कपूर के बारे में और दिलचस्प बातों को। उससे पहले सुनिए इन्हीं की फिल्म आई हेट लव स्टोरी का ये गाना। इस गीत को गाया है सूरज जगन और महालक्ष्मी अय्यर ने। गीतकार हैं अन्विता दत्त, संगीतकार हैं विशाल शेखर।

दोस्तों 2010 में आई फिल्म आयशा को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया। 2010 में आई हेट लव स्टोरी में शामिल गाने आज भी पसंदीदा लिस्ट में शामिल ज़रूर होते हैं। 2011 में थैंक यू फिल्म शाहिद के साथ 2011 में ही मौसम फिल्म और इसके गानों को बहुत पसंद किया। फिल्म रांझना में सोनम के रोल ने दर्शकों का खूब दिल जीता, जिसमें धनुष और अभय देओल के साथ सोनम नजर आई थी। इसके बाद फिल्म भाग मिल्खा भाग में उनकी छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका भी खूब चर्चे में रही। 2014 की रोम कॉम फिल्म खूबसूरत के अलावा डॉली की डोली, बेवकूफियां, वीरे दी वेडिंग, संजू जैसे हिट फिल्मों की मुख्य अभिनेत्री और अलग अलग रोल्स में सोनम कपूर को बहुत पसंद किया है। दोस्तों आगे कुछ और बातें जानेंगे सोनम के बारे में। चलिए आपको सुनवाते हैं सोनम कपूर की ही फिल्म रांझना का ये गाना। इस गीत को गाया है जावेद अली, कीर्ति समाथिया और पूजा ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

दोस्तों, सोनम कपूर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों की बात करें तो नीरजा फिल्म का नाम सबसे ऊपर रहता है। इस फिल्म के लिए कई अवार्ड्स भी सोनम ने जीते, साथ ही प्रेम रतन धन पायो, पैडमैन, ब्लाइंड वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों का हिस्सा भी रही। ग्लैमरस के साथ सीरियस और इम्पैक्टफुल किरदार भी सोनम ने निभाए हैं। उनके फिल्म और फिल्मों के गाने आज भी दर्शक खूब पसंद करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनवाते हैं सोनम की फिल्म प्रेम रतन धन पायो का गाना। इस गीत को गाया है अन्वेषा, विनीत, हर्षदीप और साथियों ने। बोल है इरशाद कामिल के, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण अभी हो रहा था। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। संध्या के 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
3: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
4: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
2: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट UG पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही CBI ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का वक्त होगा 6:20 शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 पर। प्रादेशिक समाचार हिंदी में इसका अनुप्रसारण होगा रायपुर केंद्र से 6:45 पर। संध्या 7:20 पर कृषक भाइयों का कार्यक्रम होगा किसान वाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नकली बीज खाद की खरीदारी से बचें। सुनेगा नसीहत, खेती के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर। रात्रि 9 बजे विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण 9:25 पर सुनिएगा रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आर्थिक विकास थीम पर विशेष कार्यक्रम। विविध संगीत रात्रि 10 बजे और 10:30 पर सुनिएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
8: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:10 में थोड़ी देर में आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
3: संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहीं ने कि सरकार है पाछू 12 में देश के युवा माइलोगिनो किसान मल्ला सशक्त बनाए में कोनो कसर नहीं छोड़े है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई में होइस राज्य मंत्री परिषद की बैठक। चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप लदीन मंजूरी। प्रदेश में आज ले CM हेल्पलाइन सेवा शुरू। 1076 नंबर में आम लोगन मन कर सकत है शिकायत। और मौसम विभाग अवैया 2-3 दिन में प्रदेश के कुछ एक जगह में हवा गरेर के संग वर्षा होए के संभावना जता है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कही ने कि सरकार है पाछू 12 में देश के युवा माइलोगिन और किसान मनला सशक्त बनाए में कोनो कसर नहीं छोड़े है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कही ने कि 140 करोड़ लोगन मन के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना ले प्रेरित होकर सरकार है विश्वास, विकास और जन कल्याण पर समर्पित है। प्रधानमंत्री कही ने कि ये अथक प्रयास के बाद आज देश है बुनियादी ढांचा लेके डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच में एक नवा पहचान हासिल करे है। श्री मोदी ये बात ऊपर जोर दीन है कि विकसित भारत की अपन संकल्प ला साकार करे बर सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के ये पथ में सरलग आगू बढ़त रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में NDA सरकार के 12 पूरा हुए में आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहर ले 15 मिनट के एक विशेष कार्यक्रम तैयार करेगी है। ये कार्यक्रम के प्रसारण आज रतिया 8:15 में करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र AK संग्रह रिले कर ही। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई में आज मंत्रालय में हुए राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कतकोन फैसला लेगीस। बैठक के बाद पत्रकार मन ले गोट बात करत उप मुख्यमंत्री अरुण साहू बताइन है कि मंत्री परिषद है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ला IPO के माध्यम ले स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करे जाए की मंजूरी दे है। एखर ले आम नागरिक और निवेशक मल्ला कंपनी के विकास यात्रा में भागीदारी बनाए के मौका मिलही और कंपनी के वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता ला नवा मजबूती मिलही। एक ठीन आने फैसला में मंत्री परिषद हा चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप ला मंजूरी दीन है। एखर तहत धान के जगह में आने खरीफ फसल लेवैया किसान और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास के खेती करैया किसान मल्ला हरेक एकड़ पाछू 15,000 रुपया के मदद दे जाही। ये योजना के फायदा एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार में दे जाही। उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राही मल्ला चालू वित्तीय बछर में चना देवाए के घलो फैसला ले गए है। एकर संगे संग मंत्री परिषद हा योग विषयला समाज कल्याण विभाग ले हटा के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए के प्रस्ताव ला मंजूरी दे है। एकर संग प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के क्रियान्वयन पर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट के सहमति केंद्र सरकार ला भेजे के अनुमति दे है। ये फैसला ले रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में मंजूर हुए 240 इलेक्ट्रिक बस के संचालन के रद्दा खुली। मंत्री परिषद हा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ला आपसी मंजूरी ले भूमि खरीदे ऊपर दे जावत मुद्रांक शुल्क छूट के बेरा ला 31 मार्च 2028 तक बढ़ाए के फैसला ले है। उन्हें छत्तीसगढ़ खनिज नियम में संशोधन ला मंजूरी दे गई है। प्रदेश में आज ले CM हेल्पलाइन 1076 सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई हा मंत्रालय ले ये सेवा के शुभारंभ करीन। ये मौका मोमन कही ने कि अब लोगन मन ला अपन शिकायत सुझाव और समस्या ला टोल फ्री नंबर 1076 मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम ले सीधा दर्ज करा सकें। हर एक शिकायतकर्ता ला यूनिक आईडी दे जाही जेखर ले उनका ट्रैकिंग मॉनिटरिंग और बेरा में निराकरण हो सके। श्री शाह कहने कि ये व्यवस्था में समाधान ले असंतुष्ट होए में शिकायत के फेर ले समीक्षा के प्रावधान करेगी है। संगे संग प्रदेश के विकास ले जुड़े विशेष सुझाव घलो नागरिक मन सीधा सरकार तक पहुंचा सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
4: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
3: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा सेना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मी मल्ला वीरता पुरस्कार दिन। ये पुरस्कार काली राष्ट्रपति भवन में राखे गए रक्षा अलंकरण समारोह में दे गिस। छत्तीसगढ़ के 3 लोगन ला राष्ट्रपति शौर्य चक्र ले सम्मानित करे ही। एमा असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के संगे संग छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बहादुरी और काबिलियत के परिचय देवैया पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कहने की यह पूरा प्रदेश भर गौरव के बात आए। आज पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि में ओमल्ला श्रद्धांजलि अर्पित करत है। ये मौका में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओमल्ला श्रद्धांजलि अर्पित करें। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह कहने कि भगवान बिरसा मुंडा हा आदिवासी समाज ला उखर अधिकार और विरासत के रक्षा बर एक करीन और जल जंगल जमीन के संरक्षण जन आंदोलन के रूप दिन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ला आज 10 पूरा हो गए है। ये मौका में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हा कहने कि जम्मू शिशु मल्ला गर्भावस्था के दौरान हरेक चरण में सुरक्षित और स्वस्थ देखभाल के अधिकार हवाए। सोशल मीडिया पोस्ट में उमन कहने कि पाछू 1 में सरकार है लाखों गर्भवती माइलोगिन मल्ला बेरा बेरा में स्वास्थ्य जांच विशेषज्ञ परामर्श और सुघर मातृ स्वास्थ्य सेवा देवाए के सुरक्षित मातृत्व ला एक जन आंदोलन बना दे है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हा काली देश भर में 100 औद्योगिक पार्क के विकास में तेजी लाने पर पोर्टल भव्य के शुभारंभ करीन। नई दिल्ली में श्री गोयल कहने कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास में मदद करही। उमन कहने कि औद्योगिक तंत्र ला विकसित करे के संगे संग पूरा भारत में बड़ पैमाना में निवेश के माध्यम ले बड़े स्तर में रोजगार सृजन ला बढ़ावा दे बर भव्य योजना शुरू करे गए है। भव्य योजना के अंतर्गत आने आने आकार के 100 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे।

0: अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस के मौका में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल डहर ले 6 ले 12 जून तक आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जावत है। यही कड़ी में आज रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद की अगुवाई में वॉकथन के आयोजन करेगी। ये वॉकथन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय शुरू होके वापिस कार्यालय परिसर में सिराइस। एमा अपर मंडल रेल प्रबंधक के संगे संग मंडल के आने आने अधिकारी और स्काउट गाइड के लयिका मन शामिल हुई। ए दौरान स्काउट गाइड के लयिका मन खमतराई फाटक में नुक्कड़ नाटक के माध्यम ले लोगन मन ला जागरूक करीन। महासमुंद जिला के बसना पुलिस धान खरीदी में करीबन 4.5 करोड़ रुपया के गबन के मामला में लंबा बेरा ले फरार दो जिन आरोपी मला गिरफ्तार करे है। पुलिस के मुताबिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में बछर 2020-21 के दौरान 17,210 क्विंटल ले ज्यादा धान के हेराफेरी करे गे रही। तकनीकी साक्ष्य के आधार में ओ बेरा के व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे गए है। खबर के मुताबिक ये मामला में दो जिन आरोपी की गिरफ्तारी पहली ले करे गए है। मौसम विभाग के मुताबिक अवैया 2-3 दिन में मानसून है छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगह में पहुंच सकत है। एक असल ले अवैया 5 दिन में प्रदेश के कुछ एक जगह में गरज चमक के संग हवा गरेर और वर्षा होए के संभावना है। रायपुर जिला में पाछू रतिया तेज वर्षा ले तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आए है। मौसम विभाग एला प्री मानसून के वर्षा बताए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कही ने कि सरकार है पाछू 12 बच्छर में देश के युवा माइलोगिन और किसान मल्ला सशक्त बनाए में कोनो कसर नहीं छोड़े है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई में हुई इस राज्य मंत्री परिषद की बैठक चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप ला दिन मंजूरी। प्रदेश में आज ले सीएम हेल्पलाइन की सेवा शुरू। 1076 नंबर में आम लोगन मन कर सकत है शिकायत। और मौसम विभाग हो या 2-3 दिन में प्रदेश के कुछ एक जगह में हवा गरेर के संग वर्षा होए के संभावना जताई है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: सुषमा कुमारी।
2: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जीने की राह का ये गीत। स्वर है मोहम्मद रफी का, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोकरंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: कार्यक्रम में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कटी पतंग का ये गीत। स्वर है किशोर कुमार का, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी

सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जोश, आइए इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत के स्वर में। समीर के लिखे हुए इस गीत को सुरों में ढाला है अनु मलिक ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: कार्यक्रम के अंत में आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में इंदिवर की शब्द रचना को। इसे सुरों में ढाला है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम कोयला।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:45 हुए हैं। थोड़ी देर में रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। राज्य मंत्री परिषद ने चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को दी स्वीकृति। और राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 15 मिनट अवधि का एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय से इस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब नागरिक अपनी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं टोल फ्री नंबर 1076, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायतकर्ता को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसके आवेदन की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित हो सके। श्री साय ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से लोग प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे।
1: आज छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को अपनी समस्याओं के निदान के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम और त्वरित समस्याओं का निदान हो, इसलिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आज जारी किए हैं। सवेरे से अभी तक 10 बजे से लेकर अभी तक 3,500 से ज्यादा समस्याएं यहां पर आ चुकी हैं, जिसको रजिस्टर्ड कर चुके हैं। हम पूरे प्रदेश की जनता को इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं।
0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में किसानों के साथ ही ऊर्जा, परिवहन, खनिज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। साथ ही चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा प्रदेश में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, योग विषय के प्रशासनिक पुनर्गठन और खनिज परिवहन व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने जैसे अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कृषक उन्नति योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा।
2: खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों एवं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
0: वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को चालू वित्तीय वर्ष में चना उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दी है। इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीन प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सुरक्षित मातृत्व अभियान को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रत्येक शिशु को गर्भावस्था के हर चरण में सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक देखभाल का अधिकार है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने लाखों गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके सुरक्षित मातृत्व को एक जन आंदोलन बना दिया है। आज पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने धान खरीदी में करीब 4.5 करोड़ रुपए के गबन के मामले में लंबे समय से फरार 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में वर्ष 2020-21 के दौरान 17,210 क्विंटल से अधिक धान की हेराफेरी की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 2 से 3 दिन में छत्तीसगढ़ में दस्तक दे देगा। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मानसून अगले 2-3 दिन में बस्तर पहुंच जाएगा।
1: में उत्तर रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की से लेके मध्यम रूप से मेघ गर्जन एक्टिविटी होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है आगामी 5 दिन तक भी रहने की संभावना है और मेघ गर्जन का गतिविधि 11 जून से बढ़ने की चांसेस है। ये मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा भी होने की चांसेस है 11 तारीख से। एंड मानसून का आगमन जो है बस्तर संभाग में आगामी 2 से 3 दिन में होने की पॉसिबिलिटी है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुकमा में विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा 6 से 12 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद के नेतृत्व में वॉकथन का आयोजन किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक विजय कुमार ने कल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल के 7 कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर दृष्टिबाधित टिकट परीक्षक रानी सोनवानी को यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। बलरामपुर जिले में कुंदी कला गांव के बांधपारा जंगल में आज हाथी के हमले में एक दंपति की मौत हो गई। यह घटना राजपुर वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। और गरियाबंद जिले के कुरुसकेरा गांव स्थित पैरी नदी में रेत के अवैध उत्खनन के मामले में खनिज विभाग की टीम ने 3 चैन माउंटेन मशीन और 1 हाइवा को जब्त किया है। साथ ही खदान संचालक और मशीन मालिकों को नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। राज्य मंत्री परिषद ने चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को दी स्वीकृति। और राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं अमिताभ बच्चन के स्वर में फिल्म लावारिस का ये गीत। प्रकाश मेहरा ने गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

गीत की धुन सुन करके आप समझ गए होंगे इस गीत को हमने लिया है फिल्म शोर से। लता मंगेशकर की हैं। संतोष आनंद के लिखे हुए इस गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। संध्या के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषक भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री
1: किसान वाड़ी सुनैया सबो संगी संगवारी दाई दीदी बहनी लइका सियान जवान किसान मितान सबो झनला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार। और आप सबो संगी संगवारी मन के हमार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और देखा संगवारी हो, जून के महीना चला थे कहा तो 1 जून ले 30 जून तक पूरा देश भर में खेत बचाओ अभियान चलाए जाते कहा संगवारी हो। और ये जो अभियान है खेत बचाओ अभियान, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय डहाल ले शुरू किया गई से और एक और एहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान हवे। और ये अभियान के शुरुआत संगवारी हो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के डहाल ले मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के रामसिया गांव में किया गया रही से। और संगवारी हो ये अभियान के मुख्य उद्देश्य ये हवे कि माटी के सेहत ला सुधारना। पिछले कुछ साल में कुछ दशक में संगवारी हो रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग ले इस्तेमाल ले जो माटी है वह बंजर हो के कगार में पहुंच गई सवे। तो ये अभियान के प्राथमिक लक्ष्य ये हवे कि माटी के उपजाऊ क्षमता ला वापस लौटाना हवे। और संगवारी हो लागत ला कम करना और आय ला बढ़ाना भी ये अभियान के उद्देश्य हवे। किसान मन ला कम खाद और सही सलाह के सिद्धांत पर जागरूक करना ताकि खेत में जो होने वाला खर्चा है वह कम हो सके। ये सबो हर ये अभियान के उद्देश्य हवे। और एकर एक ठन और उद्देश्य हवे कि प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा देना। रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करके जैविक और प्राकृतिक कृषि तकनीक के तरफ कदम बढ़ाना हवे संगवारी हो। तो ये सबो जो उद्देश्य है यहर खेत बचाओ अभियान के उद्देश्य हवे। और किसान मन ला का सुविधा दे जाते संगवारी हो ये अभियान के तहत, तो ये पूरा महीना 1 जून ले 30 जून तक कृषि वैज्ञानिक हैं और विशेषज्ञ हैं उमन गांव-गांव जा कर के चौपाल करत हैं और किसान संगोष्ठी भी लगाते हैं। और मन जो खेत बचाओ अभियान में जानकारी देते हैं तो संगवारी हो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी देते हैं। किसान मल्ला माटी के जांच कराए बर और रिपोर्ट के आधार पर ही संतुलित मात्रा में पोषक तत्व या फिर खाद डाले बर प्रेरित किया जाते हमार किसान संगवारी मल्ला हमार कृषि वैज्ञानिक मन के डाल ले ये सबो जानकारी हर जानकारी ला दिया जाते कहा। और संगे संग संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, खेत में बेवजह और जरूरत से ज़्यादा खाद के बजाय सही मात्रा में जैव उर्वरक के इस्तेमाल करे बर सिखाए जाते हमार विशेषज्ञ डाल ले। और जल संरक्षण और आधुनिक तकनीक, पानी के बचत करे बर आधुनिक सिंचाई पद्धति और मौसम के अनुकूल कृषि के जानकारी भी दिया जाते हमार चौपाल में कृषि संगोष्ठी में गांव-गांव जाके हमार वैज्ञानिक मन ये सबो जानकारी ला दिए थे। और नकली खाद कीटनाशक से बचाओ, बाजार में मिलने वाला जो नकली और मिलावट कृषि उत्पाद है एकर पहचान करे के तरीका भी बताए जाते हमार संगवारी मल्ला। तो आप मन चेत करो संगवारी हो और नकली बीज और खाद के खरीददारी से बचाओ। और ये हर हमार आज के बात के विषय भी हवे, नकली बीज खाद की खरीददारी से बचें खेत बचाओ अभियान। तो देखा संगवारी हो खेती खार के दिन हर आथे कहा और ऐसन बखत मा बीजा खाद के खरीदे के दिन भी आ गिस ना। और बाजार में नकली बीज और खाद के बिक्री घलो बाढ़ जाते। नकली बीज मन के प्रयोग ले मेहनत और पैसा दोनों बाढ़ जाते संगवारी हो। यानी कि हम नकली बीज के उपयोग कर दारथन तो एकल ले हमार जोन भी मेहनत है और पैसा है दोनों बर्बाद हो जाते। तो एकर संबंध में हमला सजग रहना बहुत जरूरी है। नकली बीज और खाद के ठगी ले बचे बर हमला ये सबो खास बात के हमला ध्यान रखना है। तो का ध्यान रखना है, सबले पहली तो पक्का बिल जरूर लेना है। यानी कि हमला नगद रसीद लेना है। कतको पहचान के दुकानदार हो, संगवारी हो, बीज या खाद बिसाए के बाद पक्का बिल हमला जरूर लेना है, नगद रसीद हमला जरूर मांगना है, और बिल में लाट नंबर, कंपनी के नाम और एक्सपायरी साफ साफ लिखे होना चाहिए। ये सब बात ला आप मन ध्यान रखिए। अगर फसल में कोई खराबी आते तो ये बिल हर ही आप मन के सबले बड़खा सबूत होते, गवाही होते। तो ओकरे सेती आप मन जब भी कोई भी बीज या खाद के खरीदारी करा था तो पक्का बिल जरूर लेवा। और संगे संग हमला रजिस्टर्ड यानी कि अधिकृत दुकान से ही हमला सामान ला बिसाना है। कोनो भी रास्ता चलत मनखे है या फिर घूम घाम के बेचैया या फिर बिना लाइसेंस वाले मनखे ले हमला बीज और खाद नहीं खरीदना है। ओकर से खाद, बीज और खाद आप मन झन खरीदो, संगवारी हो। अपन क्षेत्र के सहकारी समिति या कृषि विभाग से मान्यता प्राप्त दुकान से ही सामान ला आप मन लेवाओ। और संगे संग ये बीज और खाद खरीदे के संग के समय सील और पैकिंग के भी हमला जांच जरूर करना है। बोरी या पैकेट के सिलाई और सील ला बने देखो, अगर सिलाई टूटे है या फिर दोबारा सील करे असन दिखत है या बोरी हर फटे है तोला कतई झन लेवा, संगवारी हो, दूसर ले लेवा। और पैकेट के ऊपर टैग लगे रहते आप मन जाना तो है, जैसे प्रमाणित बीज पर नीला टैग लगे रहते तो ये टैग ला जरूर आप मन चेक कर लेवा। बोरी और पैकेट के लिखावट ला पढ़ाओ, संगवारी हो। असली कंपनी मन के प्रिंटिंग साफ रहते और चमकदार रहते। जोन कंपनी हर असली है तो ओकर जो प्रिंटिंग रहते वह साफ रहते और चमकदार रहते। और नकली माल में अक्सर स्पेलिंग हर गलत रहते और ओकर छपाई हर धुंधला दिखते। तो एकर माध्यम से आप मन एकर पहचान कर सकत हा। और संगे संग एक मार्ग के निशान ला भी जरूर देख लेवा। और खाद के हमला घरेलू जांच भी कर लेना है। कहा डीएपी के कुछ दाना ला हाथ में लेके चूना संग रगड़े ले ओकर तीक्ष्ण गंध आते, यानी कि अमोनिया के महक आते। तो एला तवा में धीमे आंच में गरम करे ले दाना मन फूल जाते। ये हर हो इस घरेलू जांच हमन जो भी खाद खरीदत हन तो एकर हमन घरेलू जांच भी कर सकत हन। और यूरिया है, संगवारी हो, तो यूरिया के दाना पानी में यूरिया के दाना ला पानी में डालते ही पानी हर एकदम ठंडा हो जाते, यानी कि यूरिया के दाना हर पानी में घुरते ही पानी एकदम ठंडा कर देते। एकर दाना एकदम सफ़ेद और गोल रहते, संगवारी हो। और भी हमला थोड़े से बीज और पैकेट ला बचा के रखना है। जब हम बुआई करत हन तो थोड़े से बीज और ओकर जो पैकेट है ओला बचा के रखना है। काबर कि खेत में बुआई करे के बाद भी हमला एकर जरूरत पड़ सकत है। काबर कि जब हमर बीज हर नकली होही तो हमन एला लेके जाके दिखा सकत हन। अगर खेत में बीज हर नहीं जामी तो भी हमन एकर शिकायत कर सकत हन। और संगवारी हो, अगर आप मन ला कोनो दुकान ऊपर संदेह होते या फिर शक होते कि ओहर नकली सामान बेचत है तो तुरते आप मन अपन क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आरियो है या फिर कृषि विभाग में आप मन शिकायत दर्ज करा सकत हवा। तो ऐसे हवे, संगवारी हो, ये सबो सावधानी ला अपनाना है, चेत करना है और नकली बीज और खाद के खरीदारी से बचना है। और ये जो खेत बचाओ अभियान है एम अभी एक जानकारी दिया जात है। तो संगवारी हो, बेरा हो गिसना कृषक प्रश्न मंच के कोती जाए के। तो आप मन काफी पेन निकालो और आज के प्रश्न ला लिखाओ। आज के प्रश्न हवे, संगवारी हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के शुरुआत कब ले हो रही है। एक बार और सुन लेवा प्रश्न ला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के शुरुआत कब ले हो रही है। तो एकर उत्तर आप मन ला जरूर मिल जाही, संगवारी हो, आगे हमन एकर बारे में चर्चा करबो। तो आप मन हमर कार्यक्रम ला अंत तक सुनत रह, अंत तक बने रह, तो एकर उत्तर आप मन ला जरूर मिलही। और संगवारी हो, अब हमर आज के किसान महिला किसान हैं तो ये क्रम में जाना पड़ी कहा तो मैं गेल हैं संगवारी हो ग्राम अमरकोट विकास खंड बरम किला के महिला कृषक हमें जानकी पटेल ए मल्ले खरीफ में मूंगफली की खेती के पूर्व आवश्यक तैयारी एवं प्रबंधन विषय में हो रही इसमें बातचीत तो आवा एला सुन लेवो।
0: संगवारी हो राम राम जय जवाहर। मैं हवा आप मन के संगवारी सुमित्रा पटेल और हमार कार्यक्रम में संगवारी हो भेंटवार्ता के क्रम रहते तो हमन गांव गांव जाथन और संगी संगवारी मन ले किसान दाई बहनी मन ले भेंट करथन और नाना प्रकार के फसल के बारे में हम

0: एक एकड़ में।
1: हाँ,
0: एकर बा कतका बीजा चाहिए?
1: 70 कट्ठा।
0: 70 कट्ठा। हाँ, तो ये जो बीजा है एला आप मन कहाँ ले आन था?
1: हमन जगा रहा था टीच में के ला रख था।
0: अच्छा, वो इसला रख था।
1: हाँ
0: हाँ, तो एला आप मन फोर के रखे रहा था पहली ले, है ना?
1: हाँ,
0: ताकि पानी गिरे तहा वाला जगान करके।
1: हाँ
0: हाँ, तो ये जो मूंगफली है एला लगाए के पहली खेत के तैयारी करना पड़ते,
1: हाँ
0: तो आप मन खेत के तैयारी कैसे कर था?
1: मैंने ट्रैक्टर में जोता के वही करथन।
0: हाँ, ट्रैक्टर में जोताई करथन।
1: हाँ, ट्रैक्टर में जोताई करथन, ओकर बाद फिर नांगर मुच में खिंचवा थन ट्रैक्टर में,
0: हाँ हाँ
1: और तहन ओकर बाद जगाथन, और
0: अच्छा
1: मशीन भी ओकर आगे न जगाए के।
0: अच्छा तो मशीन में भी जगवा था?
1: हाँ, मशीन में भी जगवा था।
0: तो जैसे आप मन ट्रैक्टर में ना ओमे गार खींच था, तो मूंगफली ला कतक कतक दूरी में और के ठी बीज लगा था?
1: मूंगफली ला एक बीटा के वही में जगा थन,
0: हाँ
1: छाड़ा में तीन तीन ठी चार चार ठी बीज जगा थन।
0: अच्छा, तीन तीन थी चार चार थी।
1: हाँ,
0: तो तीन तीन थी चार चार थी कब जगह था?
1: और बढ़िया होते कब।
0: अच्छा, बढ़िया होते। मान ले एक कोई हर नहीं जामे या
1: हाँ
0: फिर कोई हर खराब रहे,
1: हाँ
0: तो तीन चार ठो में से एक न एक ठो हर जाम जही करके तीन चार ठो लगा था?
1: हाँ
0: अच्छा, तीन चार ठो लगा था, है ना?
1: हाँ
0: हाँ, और एक एक बिता के दूरी में। तो ये मूंगफली ला लगाए के बाद का कर था?
1: माने जगाए के बाद तहाँ वाला वो कोपर में कोपरिया थे,
0: अच्छा, माने माटी में तोप
1: तोप
0: देता,
1: देता ना।
0: कोपर में कोपरा के।
1: हाँ
0: यह तोपा जाते,
1: हाँ
0: ओकर बाद यह कतका दिन में जाम जाते?
1: यार 10-15 दिन में तहाँ जाम थे
0: अच्छा, तो कोपराए के बाद में और कछु डालना पड़ते
1: ना, वो राखा डालते।
0: ऊपर में?
1: हाँ, वो मैंने जगाए के बाद दो में छींच देते।
0: हाँ, वो लाइन में छीट दे रहा था,
1: हाँ
0: तहा ओकर बाद माटी में कोपरा देता
1: हाँ
0: पहले। हाँ, ओकर बाद यह 10-15 दिन में जाम जाते,
1: हाँ
0: तो छोटे छोटे होते, ओकर बाद यह धीरे धीरे बढ़ जाते कहा।
1: हाँ
0: तो जैसे पौधा हो जाते तो एमे कतका दिन में गंद आ जाते?
1: कौन हर 2-2.5 महीना के बाद आ जाते, 3 महीना में तहाँ ओकर कोड़ाई कर छन,
0: अच्छा,
1: मूंगफली पूरा हो जाते।
0: माने कि 3 महीना में मूंगफली पूरा हो जाते?
1: हाँ
0: तो जैसे एला 2-3 महीना में हो जाते कहा था,
1: हाँ
0: तो जैसे 10-15 दिन में जाम जाते कहा था, ओकर बाद एमे जैसे बीच बीच में घास हो जाते या फिर बंद कचरा हो जाते, तो एकर बर का कर था?
1: एक और बार वो सिंचाई कर सन दवाई।
0: अच्छा, दवाई छिड़क था।
1: हाँ
0: हाँ, फिर एमे जैसे पानी बीच बीच में सिंचाई करना पड़ते?
1: हाँ पानी सिंचाई करनी लगे, इसने ऊपर ले गिरते उच में हो जाते
0: अच्छा, हाँ, बरसात के
1: बरसात के
0: पानी में हो
1: दिन।
0: जाते।
1: हाँ
0: हाँ, पानी के मतलब सिंचाई के जरूरत नहीं पड़े।
1: नहीं
0: हाँ,
1: पड़े।
0: बस घास फूस ला देखे वाला थे कहा,
1: हाँ
0: बंद कचरा ला, है ना?
1: हाँ हाँ
0: और जैसे में कुछ रोग बीमारी भी लगते?
1: हाँ ऊपर में भी दवाई कीड़ा मकोड़ा के छींचते हैं।
0: अच्छा, एकर बार आप मल्ला सतत निगरानी करते रहे वाला थे?
1: हाँ
0: हाँ, तो दीदी जैसे आप मन बता था कि 3 महीना में मूंगफली हो जाते, है ना?
1: हाँ
0: होए के बाद एला कैसे मतलब आप मन उसका था?
1: हाँ उसका था ना मेल्हा वाला के, उसका वो
0: अच्छा
1: ओकर बाद मशीन में तहाँ टोरा था, अब मशीन आ गया ना।
0: अच्छा मशीन में टोरा था, तो ये में अच्छा से मतलब टूट जाते?
1: हाँ
0: अच्छा, एला जैसे हो जाते तो लगभग आप मन के एक एकड़ लगाथन कहा था, तो मैं कतका हो जाते मूंगफली, कतका हो जाते?
1: मूंगफली हर हो जाते 40-50 पैकेट हो जाते,
0: अच्छा, हाँ
1: 50 पैकेट।
0: अच्छा, तो एकर बिक्री आप मन कहाँ में कर था?
1: लेबर आते ना घर घर ला,
0: हाँ
1: तो मन
0: अच्छा,
1: ठीक
0: हाँ, कोचिया
1: बेचता,
0: मनाते
1: कोचिया
0: का
1: मनाते। हाँ
0: लेबर, और घर में भी जैसे कोई लेना चाहते हैं तो दे देता,
1: हाँ
0: और घर के यूज करे पर भी राख लेता पहले,
1: हाँ
0: बीजा पर भी राख लेता, है
1: हाँ
0: ना?
1: बीजा भी
0: फिर
1: रहते।
0: जो बचते वाला बेच देता।
1: हाँ
0: तो इसमें अच्छा से आप मल्ला आमदनी मिलते?
1: हाँ मिलते 60-70 हज़ार मिल जाते वही के
0: अच्छा,
1: हिसाब से।
0: हाँ, रेट के हिसाब
1: हाँ
0: से अच्छा से मिल जाएगा।
1: हाँ
0: हाँ, तो दीदी आप मन मूंगफली लगाए के तैयारी कर रहा था, है ना? अभी जून में, आने वाला जून में,
1: हाँ
0: तो का आप मन एकर बीजा फोड़ के रखा था?
1: हाँ फोर के रखा था।
0: अच्छा, रखा था।
1: हाँ
0: तो दीदी आप मन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था, है ना?
1: हाँ
0: जैसे पहली लेनी फोड़े रहले अचानक से पानी गिर जाले, वह दिक्कत हो जाते, तो
1: हाँ
0: ये अच्छा बात है कि आप मन पहली ले फोड़ के रखा था।
1: हाँ
0: तो आप मने लगाए के पहले बीज उपचार भी करत हो, है ना,
1: हाँ
0: कि सब बीज हर अच्छा है कि नहीं है करके,
1: हाँ
0: हमें पता चल जाते। तो दीदी आप मन बहुत ही अच्छा जानकारी दे था कहा, और आखिर में ये कहना चाहा था कि हमार जोन भी रेडियो सुनने वाला किसान संगी संगवारी है, मतलब आप मन का कहना चाहा था, मतलब का संदेश देना चाहा था? आप मन के जो आमदनी है वह बहुत ही अच्छा हो जाते है ना।
1: हाँ
0: हाँ, तो आप मन के संदेश बहुत ही अच्छा हवे दीदी, इतकी अच्छा जानकारी दे बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।
1: जय जोहार।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुने संदेश कहा और संदेश के पहली सुनत रहन हमार किसानिन बहनी ला जोन मन खरीफ में मूंगफली के खेती के पहली जो आवश्यक तैयारी रहते उकर प्रबंधन कैसे करते हैं एकर बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी बतात रहिन कहा। तो संगवारी हो हमार चर्चा कोती आगू बढ़वो, तो आज के नसीहत के विषय हवे खेती के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। तो संगवारी हो किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार डाहल ले 1998 में शुरू किया गया रही से और यह ओमन के एक ठन प्रमुख योजना हवे और एकर मुख्य उद्देश्य किसान मल्ला खेती ले जुड़े जरूरत जैसे

पल्ले 3% के अउ छूट मिलथे। अउ 3% छूट के बाद समय में पैसा पटाए में आप ला सिर्फ 4% ही ब्याज आप मन ला देना पड़ते। यानी कि केसीसी लोन में आप मन समय में लोन ला पटा दी है तो उमें आप मन ला सिर्फ 4% ही ब्याज पड़ी संगवारी हो। और ये हर भारत सरकार के स्कीम हवे, योजना हवे। और छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक के माध्यम ले किसान मन ला खेती बर 0% ब्याज में घलो अल्पकालीन कृषि ऋण जोन ला हमन शॉर्ट टर्म लोन कथन एला दिए जाते, जेकर फायदा केसीसी के तहत मिलते संगवारी हो। और केसीसी बर जरूरी कागजात का लागथे कहले केसीसी बनवाए बर आप ला खेती के कागज B1 खसरा और P2 खसरा एकर जो फोटो कापी है यह लागही और यह पटवारी ले सत्यापित होना चाहिए। और पहचान पत्र बर आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड। और निवास प्रमाण बर आधार कार्ड या राशन कार्ड के जरूरत पड़ते। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक के फोटो कापी और संगे संग शपथ पत्र की आप कोनो दूसर बैंक ले केसीसी के फायदा नहीं लेवा था एकर शपथ पत्र भी लागथे संगवारी हो। और केसीसी बनवाए के आसान तरीका हवे, आप मन केसीसी बनवाए बर 3 ले आवेदन कर सकत हा। सबले पहली तो सहकारी समिति यानी कि सोसाइटी के माध्यम ले, यह सबले आसान तरीका हवे। हमर छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में प्राथमिक कृषि साग सहकारी समिति हवे बने हवे, जेला हमन सामान्य भाषा में सोसाइटी भी कहथन संगवारी हो। तो आप मन गांव के सोसाइटी में जावा, वहां के प्रबंधक ले केसीसी फार्म ला मांगा और अपन B1 खसरा और आधार कार्ड लगा के फार्म ला जमा कर देवा। वहां ले आप मन के क्रेडिट लिमिट तय हो जाही और कार्ड बन जाही। तो यह सबले आसान तरीका है, एला आप मन अपना सकत हवा संगवारी हो और क्रेडिट कार्ड बनवा सकत हा। और दूसर तरीका हवे सरकारी या फिर ग्रामीण बैंक में जाके आप अपन नज़दीकी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक या फिर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक या फिर SBI ऐसन कतकोन सरकारी बैंक है, एमा आप मन जा करके कृषि लोन अधिकारी ले मिल सकत हवा और फार्म ला भर सकत हवा। ऐसने ही तीसर तरीका हवे संगवारी हो, आप मन खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकत हा। अगर आप मन PM किसान योजना के लाभार्थी हवा तो आप मन अपन के लखठा के CSC चाइस सेंटर में जा करके या फिर खुद PM किसान के पोर्टल में जा करके KCC फार्म ऑनलाइन भर सकत हा। तो संगवारी हो, 1.5 लाख रुपए तक के KCC लोन बर बैंक वाला मन भी कोई भी गारंटी नहीं मांगे। ये लोन है सिर्फ आप मन के खेती के जमीन के कागज देख के मिल जाते। तो अगर आप मन ला भी ये योजना के लाभ उठाना है संगवारी हो, तो आप मन ये तीनों तरीका ले फार्म भर सकत हवा और KCC किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकत हवा। यह बहुत ही जरूरी हवे संगवारी हो, काबर की हमें कम ब्याज में खेती किसानी के बूता काम करे बर लोन मिल जाते। तो आप मन ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ जरूर उठावा। तो संगवारी हो, आवाज सुन लेबो एक ठन सुग्घर अकन के लोकगीत ला, ओकर बाद फिर हमन चर्चा करबो।

हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहें सुघर अकन के लोकगीत ला, जला गा रही है विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार। तो संगवारी हो, लोकगीत कैसे लागे आप मन जरूर बताहा, मेल के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से। और संगवारी हो, आओ हमर आज के टिप के विषय हवे, रसायन मुक्त खेती, स्वस्थ मिट्टी के लिए प्राकृतिक खेती अपनाएं, खेत बचाओ अभियान। तो संगवारी हो, रसायन मुक्त खेती और स्वस्थ माटी पर प्राकृतिक खेती अपनाना बहुत ही जरूरी हो गए है। हम भूमिया ला उपजाऊ बनाए रखे बर प्राकृतिक खेती कैसे मददगार है, आवा एकर बारे में थोड़ कुन बातचीत करबो। तो रासायनिक खेती ले का नुकसान होते संगवारी हो, तो रासायनिक खेती ने सबले पहली तो हमार माटी है रोआ थे, कहा माटी के जान खत्म हो जाते, ज्यादा

गर्मी डाले ले हमर भुइया हर हमर माटी हर कड़क हो जाथे और ओकर हर घलो खत्म हो जाथे संगवारी हो। और रसायन ने संगे संग हमर पर्यावरण भी नठाच जाथे, हमर पर्यावरण के जो संतुलन है वो भी दिन के दिन बिगड़त जाथे कहा। और संगवारी हो रासायनिक दवाई मन हमर माटी के असली संगवारी केचुआ और छोटे छोटे जीव मन ला मारथे जेकर से माटी बेजान हो जाथे संगवारी हो। और बीमारी के घर भी हो जाथे यानी कि रासायनिक खेती ले उगे अनाज ला खा के सब्बो झन बीमार हुआ थे, चाहे वो नान नान लड़का हो या सियान हो या जवान हो, कोई भी हो, आजकल सब्बो बीमार पड़त हमें, सब्बो झन ला नाना प्रकार के रोग बीमारी हो जाते संगवारी हो। एकर वजह हवे सिर्फ और सिर्फ ये रासायनिक खेती करना, यानी कि रासायनिक खेती में हमन हमर फसल ला पैदावार ला बढ़ाए बर अंधाधुंध मात्रा में ये रासायनिक खाद और उर्वरक के उपयोग करत हन। तो एकर से का होते फसल पैदावार बढ़त है संगवारी हो, लेकिन और नाना प्रकार के नुकसान होते, जैसे माटी रोवत है, माटी के संग संग हमार पेड़ पौधा मन भी रोवत है और हमन मनखे मन भी रोवत हैं संगवारी हो। तो आप मन ला रासायनिक खेती ला छोड़ करके प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होना है कहा। और संगवारी हो प्राकृतिक खेती का कैसे अपनाना है, तो संगी हो प्राकृतिक खेती में बाहर से कोनो महंगा खा बिसाए के जरूरत नहीं पड़े, सब कुछ हमार घर और गोठान या फिर गौशाला में हमला मिल जाते संगवारी हो। तो एकर से का होते लागत भी कम लागते और मुनाफा, और संगे संग एकर जो प्राकृतिक खेती ले उपजे जो भी फसल है ओकर स्वाद गुणवत्ता भी अच्छा रहते और एकर से हमार जो बीमार पड़त हन वह भी कम हो जाही। तो संगवारी हो प्राकृतिक खेती में जीवामृत और बीजामृत ये माटी के टॉनिक हवे। तो बीजामृत बुआई के पहली बीज मल्ला गोबर गौमूत्र और चूना मिला के शोधन कराओ, एकत से बीज में कीड़ा नहीं लगे, यानी कि प्राकृतिक खेती पर बीजामृत और जीवामृत सबले अच्छा हवे। तो बीजामृत तैयार करे बर हमला का चाहिए संगवारी हो, तो सबले पहली गोबर ला एक कपड़ा में ले लेना है और टेप में ओला अच्छा से बांध लेना है और कपड़ा 20 लीटर पानी में लटका देना है कहा। और पानी लेना है और ओमें 50 करके रात भर ओला रख देना है। अगली सुबह जब बंडल ला पानी में 3 बार लगातार निचोड़ना है ताकि गोबर के जो महत्वपूर्ण तत्व रहते वह पानी में मिल जाए। अब एक मुट्ठी माटी ला लगभग 1 किलोग्राम जल मिश्रण में मिलाना है और अच्छी तरह से ओला चलाना है। अब ये मिश्रण में देसी गाय के 5 लीटर मूत्र और चूना पानी ला मिलाना है और अच्छी तरह से चलाना है। तो ये तो बन गई संगवारी हो बीजामृत। अब बीजामृत के उपयोग हमन कैसे कर सकत हन, तो स्प्रे द्वारा कर सकत हन और बीज ला हाथ से मिला करके भी कर सकत हन और सुखा के बाद रोपण करना है और बीज ला उपचार के बाद 7 दिन में उपयोग करना है। बीजामृत संगवारी हो तो बीज हर जल्दी अंकुरित होते, बीज बड़े मात्रा में उगते यानी कि सब्बो बीज हर उग जाते और जो रोग होते रोग है ओकर ले पौधा ला बचाते और जब तेजी से बाढ़ते संगवारी हो और बीज ले कीड़ा ला हटाते, फंगस वायरल ये सब ला रोकते। तो ये तो है बीजामृत संगवारी हो। अब जीवामृत के बात करबो तो गाय गोबर गौमूत्र बेसन गुड़ और कूट कूट के बरगद पेड़ के नीचे के माटी ला मिला के हमला जीवामृत बनाना है और खेत में डाले ले माटी में करोड़ों मित्र जीवाणु पैदा होते जो माटी ला फिर से जीवन बना देते, माटी हर रोते उहर फिर से शांत हो जाही संगवारी हो। माटी के जोन उपजाऊ क्षमता कम हो जाते उहर फिर से लौट जाही और संगे संग संगवारी हो घन जीवामृत जो हमन सूखा एला भी हम

उपयोग कर सकत हन। एमा गोबर खाए गौमूत्र गुड़ और बेसन मिला के एला का करना है सूखा लेना है। एला बुआई के समय खेत में डारो और यह केचुआ मन ला वापस बुला के काम करते। ये जो घन जीवामृत है सूखा खाद है यह केचुआ मन ला हमर माटी में वापस बुलाए के काम करते और आच्छादन यानी कि मल्चिंग नमी बचाए बर आच्छादन के उपयोग करना है। खेत के माटी ला कभू उघरा यानी कि खुला झन छोड़ो। फसल के अवशेष जैसे पैरा है पत्ता मन ला माटी के ऊपर बिछा देव। एकर से पानी के होते और माटी में नमी बने रहते और केचुआ मन लगा के काम करते। संगवारी हो ऐसने ही हमला नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र के उपयोग करना है कीड़ा मकोड़ा भगाए बर। जैसे रासायनिक जहर डारे के बिल्कुल जरूरत नहीं है। में जब हम प्राकृतिक खेती करत हैं तो रासायनिक दवाई डालना नहीं है। नीम के पत्ता करंज के पत्ता लहसुन और मिर्चा ला गौमूत्र में उबाल के प्राकृतिक कीटनाशक बनावा। यह कीड़ा मन ला भगाते संगवारी हो और माटी ला जहरीला नहीं बनाए। ये तो होगी संगवारी हो नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र के उपयोग करना है कीड़ा मकोड़ा भगाए बर। और प्राकृतिक खेती ले का फायदा होते तो सबले पहली तो लागत आधा लागते और मुनाफा ज़्यादा होते। बाहर से कोई महंगा खाद दवाई बिसाए के खर्चा बच जाते और जेब के पैसा भी जेब में ही रह जाते और माटी हर स्वस्थ रहते। संगवारी हो माटी एकदम भूर भूरी उपजाऊ और सुघर हो जाही। पानी सोखे के जो क्षमता है वह बाढ़ जाही जेकर से सूखा में घलो फसल बचे रही और अमृत जैसन अनाज पैदा होही। संगवारी हो खेत से जो धान भाजी और साग सब्जी निकल ही वह को बीमारी मल्ला दूर भगही। हमार छत्तीसगढ़ के ये लयका मन बर सियान मन बर एहर का होही तंदुरुस्त होही। तो ये तो ही संगवारी हो प्राकृतिक खेती रसायन मुक्त खेती हमला अपनाना है प्राकृतिक खेती ला अपनाना है। तो आवा संगवारी हो एक ठन आओ सुघर अखन के लोकगीत ला सुन लेबो।

हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहन सुग्घर अकन के लोकगीत ला, सुग्घर लागे हो ही संगवारी हो। एला गाय रहीन है निजाम सिंह दीवान और खिलेश्वरी साहू। बहुत बढ़िया लागी संगवारी हो ये लोकगीत ला सुन के। और संगवारी हो हमार आओ भी चर्चा के विषय हवे अंग्रेजी शासन के सशक्त प्रतिरोध के प्रतीक बिरसा मुंडा जी के आज पुण्यतिथि हवे। तो संगवारी हो बिरसा मुंडा जी ह अंग्रेजी शासन और ओकर शोषण के खिलाफ ऐसन जबरदस्त लड़ाई लड़ीस जेकर गूंज आज भी गूंजत है संगवारी हो। एमन महान विद्रोह के शुरुआत करीन, अंग्रेज मन आदिवासी मन के जल जंगल और जमीन ला छीने के कोशिश करत रहिन। साहूकार और जमींदार मन मिल के आदिवासी मन के शोषण करत रहिन। बिरसा मुंडा जी ह एकर खिलाफ महाविद्रोह के आवाज उठाइस। ओह कहिस कि अपन जमीन मा हमर राज होना चाहिए। एमन धरती आबा जगत पिता के रूप में भी उभरिन। बिरसा मुंडा जिला आदिवासी मन धरती आबा कहत रहिन। ओहर सब्बो आदिवासी मन

एक करिस अउ अंधविश्वास मन ला छोड़ के अपन संस्कृति अउ हक बर लड़े बर जगाई संगवारी हो। ओकर कहना रहिस कि तीर धनुष अउ पारंपरिक हथियार ले ही हमन अंग्रेज मन के बंदूक के सामना कर सकत हन। अंग्रेज मन के पास बंदूक रहिस तो ओमन के पास तीर धनुष अउ पारंपरिक जोन भी हथियार रहिस तो ओमन ओमन ला प्रेरणा दिन कि हमन एकर से ही ओमन से लड़ सकत हन और बस मन में विश्वास होना चाहिए, ऐसे करके ओमन ला संदेश दिन संगवारी हो। और अंग्रेज मन हर आखिर में बिरसा मुंडा जिला पकड़े बर इनाम रख दिन और आखिर में सन 1900 मा ओमन ला चक्रधरपुर के जंगल ले गिरफ्तार कर लिया गिस और रांची जेल में बंद करे के दौरान ओमन के 24 साल के सिर्फ उम्र में 9 जून 1990 में ओमन के अचेत मौत होगी संगवारी हो। तो हमन ऐसन अंग्रेजी शासन के सशक्त प्रतिरोध के प्रतीक बिरसा मुंडा जिला ओमन के पुण्यतिथि में याद करथन, सुरता करथन, नमन करथन और वंदन करथन संगवारी हो। और संगवारी हो अभी चर्चा के विषय है प्राकृतिक आपदाओं में कृषकों का आर्थिक संबल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो संगवारी हो प्राकृतिक आपदा के समय हमर किसान भाई बहनी मन ला आर्थिक संबल यानी सहारा दे बर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत बड़े और मददगार योजना है संगवारी हो। जब सूखा, बाढ़, कीड़ा मकोड़ा या कोनो प्राकृतिक आफत ले फसल ला नुकसान होते ता ये जो योजना है किसान मन के नुकसान के भरपाई करते। तो आपो मन भी संगवारी हो आप मन के जब कन्हों कछु नुकसान होते तो ये योजना में सम अपन भाग ले सकत है, योजना के लाभ उठा सकत हव। और ये योजना के मुख्य उद्देश्य हवे यानी कि ये योजना ला काबर चालू करे गे रही संगवारी हो तो आर्थिक सुरक्षा। प्राकृतिक आपदा कीड़ा मकोड़ा या बीमारी ले फसल खराब होए मा किसान मन ला बीमा के पैसा मिलते। खेती में निरंतरता फसल नुकसान होए के बाद भी किसान मन करा आघू के खेती बर पैसा रहे ताकि ओमन हताश झन होए। और नवा जोन तकनीक है ओला बढ़ावा देना एकर उद्देश्य हवे। किसान मन खेती में नवा और आधुनिक तरीका मन के उपयोग बेझिझक कर सकें। और संगवारी हो एमे किसान मन ला कतका पैसा देना पड़ते यानी कि प्रीमियम के दर का रही थे तो ये योजना मा किसान भाई मन ला बहुते कम प्रीमियम देना पड़ते। बाकी के जो बड़े हिस्सा है ओला सरकार हर देते। जैसे खरीफ फसल है तो में जैसे धान और मक्का के फसल ले हन तो एकर बर फसल के कुल रकम के 2% किसान बर प्रीमियम दर हवे, बाकी सरकार को ती ले आते। और जो रबी फसल है जैसे गेहूं चना है एकर बर फसल के कुल रकम के 1.5% यानी कि 1.5% ही किसान बर प्रीमियम दर हवे संगवारी हो। और अगर आप मन व्यवसायिक और बागवानी फसल जैसे सब्जी फल वगैरह लगाए हवा तो ये फसल के कुल रकम के 5% किसान बर प्रीमियम दर हवे। तो संगवारी हो ये तो रही प्रीमियम दर। अब कौन कौन से नुकसान में ये बीमा ले पैसा मिलते तो बुआई जैसे बुआई में रुकावट अगर खराब मौसम या सूखा के सेती किसान हर खेत में बुआई घलो नहीं कर पाई से तभो ले ओला ये सहायता मिलते कर ले। और खड़ी फसल ला नुकसान जैसे सूखा, बाढ़, जल भराव या फिर कीड़ा मन के हमला है या फिर कोनो बीमारी है एकर से फसल खराब होते तो एकर से भी ओमन ला लाभ मिलते कहा। तो आवा संगवारी हो एक ठन और सुन लेबो सुग्घर अखन के लोकगीत ला।

हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुघ्घर अकन के लोकगीत ला सुनत रहन। कहा बढ़िया ही लोकगीत है लागिस, कहा जेला गा रहीन है द्वारिका यादव और सरस्वती निषाद। तो संगवारी हो, हमर और भी चर्चा के विषय है, टीबी का इलाज संभव है, बस जरूरत है समय पर जांच की। संगवारी हो, कोनो भी बीमारी से डरे के जरूरत नहीं है। टीबी के बीमारी होगी से तो हमला बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकर बस जरूरत है समय में जांच के। संगवारी हो, और टीबी के मुख्य लक्षण के मुख्य जो लक्षण है एकर बात करबो तो लगातार खांसी आते, 2 या 3 हफ्ता ले ज़्यादा समय तक लगातार खांसी रहना, कभू कभू खांसी के साथ खून या बलगम आते, बुखार आते, खासकर शाम या रात के समय में हल्का बुखार आते, और वजन लगातार कम हो जाते। बिना कन्हो वजह ले कर उमन के जो टीबी बीमारी के मरीज है उकर वजन कम हो जाते, रात में पसीना आते संगवारी हो, और सीना में दर्द होते, सांस लेते समय या फिर खांसते समय सीना में तेज दर्द होते या फिर भारीपन महसूस होते, तो टीबी होगी से तो एकर से घबराना नहीं है संगवारी हो, एक इलाज संभव है, बस समय में कर जांच के जरूरत है। तो संगवारी हो, मुर जाए के बेला हो गए, जात जात सबो संगी संगवारी मल्ला, सुमित्रा पटेल के राम राम, जय जोहार।

0: कृषक भाइयों के लिए कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण अभी हो रहा था। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:15 हुए, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की।
2: श्रोताओं नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 से शुरू हुई इस यात्रा में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक कल्याण और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका के कई नए आयाम देखे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानते हैं कि 12 वर्षों में देश ने किन प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए। सरकार का विशेष ध्यान गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर रहा। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में जनधन योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। आधार और मोबाइल के साथ जनधन खातों के एकीकरण ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली को मजबूत बनाया, जिससे सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंचने लगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना को देश की सबसे बड़ी पहलों में गिना जाता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2025 तक देश में 56 करोड़ 16 लाख से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें लगभग 56% खाते महिलाओं के हैं और करीब 67% खाते ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। इन खातों में जमा राशि बढ़कर 2,67,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था को मजबूत बनाया है। सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न डीबीटी योजनाओं के तहत लगभग 6,90,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए। गरीब कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और जनधन जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोग तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया है कि पिछले वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। औद्योगिक क्षेत्र भिलाई निवासी सोमेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है।
3: मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना, भातारी बंदर योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन्होंने जो शौचालय करोड़ों परिवारों को शौचालय का उपलब्ध कराया, सराहनीय कदम है। गरीब परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराई है, जिससे गरीब परिवारों को काफी लाभ मिला हुआ है।
2: सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाते हुए रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया। वहीं आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिली। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया और खुले में शौच से मुक्त भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। दुर्ग जिले के धमदा गांव के प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हर घर शौचालय का निर्माण किया गया। वहीं उज्ज्वला योजना भी महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है।
4: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इन 12 वर्षों में जो दौर रहा है उनका बहुत ही उपलब्धि भरा रहा है। मोदी जी ने शौचालय से लेकर एक आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए पूरे देश भर में शौचालय का निर्माण किया है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर जिनके भी कच्चे मकान थे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के रूप में आवास उपलब्ध कराया है। हमारी बहने माताओं को जो लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाना पड़ता था उनके लिए उन्होंने गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। इस प्रकार से विभिन्न योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी ने इन 12 वर्षों में इस देश की आम जनता को उपलब्ध कराया है।
2: श्रोताओं, कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सिंचाई, कृषि अवसंरचना और तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए। सहकारिता विशेषज्ञ प्रीतपाल बेलचंदन ने बताया कि सहकारिता पर आधारित केंद्र सरकार की नीतियों से किसानों को लाभ मिला है। विकसित भारत में सहकारिता की भूमिका बहुत बड़ी होगी।
5: मोदी जी ने सिर्फ पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया, 2047 तक विकसित भारत की दृश्य क्या होनी चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए, इसके लिए काम किए। और उस परिप्रेक्ष्य में सहकार से समृद्धि एक ऐसा योजना लॉन्च किया जो अटल बिहारी जी वाजपेयी का कल्पना था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की जो उनकी मूल मंत्र थी, उसको अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता के लिए जो 2047 में विकसित भारत होगी, उसमें सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका सुनिश्चित करने की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजना है। और सहकारिता का एक जीता जागता उदाहरण है अभी छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में, जो किसानों के लिए समितियों के माध्यम से ड्रोन से कीटनाशक सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराया गया, वो अपने आप में एक शुरुआत है।
2: मोटे अनाज यानी श्री अन्न को प्रोत्साहन देने में भी भारत ने वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। दुर्ग जिले के अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बीते 12 वर्षों में बढ़ गई है।
6: पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल इंडिया और UPI ने देश को डिजिटल क्रांति का वैश्विक मॉडल बना दिया है। वंदे भारत ट्रेनें, आधुनिक हाईवे, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तेज रफ्तार का प्रतीक बन चुका है।
2: श्रोताओं, बुनियादी ढांचे के विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान मिला। राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विस्तार हुआ, रेलवे के आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों के संचालन, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। देश में हवाई अड्डों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा गया। वहीं भारतमाला परियोजना के तहत नए राजमार्गों का निर्माण और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कार्यपालन अभियंता अनंत दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।
7: आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में सड़कों का विस्तार हुआ है एवं GPM जिले के 3 वर्ष के कार्यकाल में 37 किलोमीटर सड़कें पूर्ण करा ली गई हैं एवं 32 किलोमीटर प्रगतिरत हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि समय सीमा में पूर्ण कराने का कार्य है, जिसमें गांवों को बारामासी सड़क से जोड़ने का कार्य करते हैं एवं ब्रिज बनाते हैं। जो गांव बरसात में मुख्य धारा से कट जाते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के दूरदर्शी सोच को दर्शाता है कि आखिरी छोर भी किसी प्रकार से हीन न रहे। ऐसे वनांचल जहां सड़कों का विस्तार न होने के कारण प्रसव हेतु एम्बुलेंस का आना जाना नहीं हो पाता था, PDS वितरण प्रणाली ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती थी, स्कूल में बच्चों के आने जाने हेतु गंदी मिट्टी एवं कीचड़ भरी सड़कें उपलब्ध होती थी, बाजार जाना और वहां से वापस आना भी बहुत मुश्किल कार्य था। इन सभी सड़कों को बनाकर, इन सभी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हर गांव की तस्वीर को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005 से करती आ रही है एवं निरंतर करती रहेगी।
2: बंदरगाहों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा, जिससे व्यापार और परिवहन को नई गति मिली। गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी पहलों ने समन्वित विकास की नई दिशा प्रदान की। श्रोताओं, डिजिटल इंडिया अभियान इन 12 वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार गांव तक पहुंचा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण होने से पारदर्शिता और सुगमता बढ़ी है। दुर्ग के पाटन निवासी उत्तम कुमार सिन्हा ने डिजिटल इंडिया अभियान की सराहना की।
8: हमारे देश में आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि इस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड वाइड डिमांड पे है और कई देशों को हमने सप्लाई किया है। आज UPI पेमेंट एक चाय वाले से लेकर के बड़े बड़े मॉल में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में एक बहुत बड़े उपलब्धि के तौर पर मैं इसको लेता हूँ। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पे देखें तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हमारे देश का लोगों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही आले दर्जे का है और आज वर्ल्ड वाइड हमारे देश के लोगों की इज्जत, इंडिया की इज्जत, भारत देश की इज्जत पूरे विश्व में बहुत ही अच्छे नाम से लिया जाता है।
2: श्रोताओं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अनेक कदम उठाए गए। मातृत्व लाभ, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए। दुर्ग जिले के मतवारी गांव की रहने वाली नमो ड्रोन दीदी जागृति साहू ने बताया कि इस योजना से महिलाएं सशक्त हुई हैं।
9: आज हमारे भारत देश की महिलाएं जो कि समूह से जुड़कर सशक्त होते जा रही हैं, जो नमो ड्रोन दीदी के द्वारा सशक्त हो रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जिनके द्वारा आज भारत में हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और अगर वो अपने इस महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च नहीं किए रहते तो हमारे PM के द्वारा हमारा सिलेक्शन नमो ड्रोन दीदी के रूप में हुआ है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
2: युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलें शुरू की गई। भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत सुधार किए गए हैं। भिलाई स्थित सर्वोदय फाउंडेशन के प्रशांत मिश्रा ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।
10: मोदी सरकार जी के द्वारा 12 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं वो अकल्पनीय है। दूसरी सरकारों में जितनी भी समस्याएं थी सारी समस्याओं का निवारण एक तरीके से मोदी सरकार ने कर दिया। सबसे बड़ी प्राथमिकता इन्होंने जो रोजगार के लिए जिस तरीके से युवाओं को प्रेरित किया है कि आप किसी भी रूप से रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं।
2: आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देने का प्रयास किया गया। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजनाओं के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, रक्षा उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित किया गया। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिला और भारत रक्षा उपकरणों के निर्यात में भी आगे बढ़ा है। श्रोताओं, विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्रमुखता से उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और प्रभाव में वृद्धि हुई है। आपदा राहत, वैक्सीन मैत्री और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत की सक्रिय भागीदारी को व्यापक सराहना मिली। ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, सौर ऊर्जा को बढ़ावा और हरित विकास की दिशा में अनेक पहलें की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल भारत के नेतृत्व की पहचान बनी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्षों में देश ने सामाजिक कल्याण, आधारभूत संरचना, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक सुधार, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और विकास, सुशासन तथा जन कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं।
11: 12 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुआ है। पहले शासन के कार्यकाल में हमको भी उनके साथ राज्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने पहले 5 साल गरीब कल्याण के काम इस देश में किए हैं। सबका उन्होंने पक्का का घर बनवाया है, सबके घर में शौचालय का निर्माण, सबके घर में नल द्वारा पानी, सबके घर में बिजली, सबके घर में बैंक का खाता, इस तरह से गरीब कल्याण के काम हुए हैं। कोरोना जैसे विपत्ति से निपटे हैं और उसके बाद से अब 80 करोड़ लोगों को अनाज भी फ्री मिल रहा है और तीसरे कालकाल में एक नए भारत के निर्माण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 वो हटा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ है। हमारी मुस्लिम बहनों के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ है। इस तरह से ऐतिहासिक काम इन 12 वर्षों में हुए।
2: सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इन वर्षों में योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी तथा तकनीक आधारित बनाने पर विशेष बल दिया गया। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते देश की ये यात्रा आगे भी जारी है। श्रोताओं, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में फैज अनवर की शब्द रचना को। संगीत है नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं।

0: एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: रोटी, कपड़ा और मकान, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर में। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: कलाकारों के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी देर में समाचार होंगे।
1: AIR@gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक
0: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
3: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
2: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि MT मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
3: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
4: The amount of time we have spent
5: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, LNG, LPG तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या COVID-19 महामारी जैसे स्थितियां दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एनआई स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उसपे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

0: आकाशवाणी समाचार। मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is
6: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 9 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
7: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश के गाए इस गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद में से। गीतकार हैं कमल जलालाबादी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम का अगला गाना ज्वलती फिल्म से है। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एसडी बर्मन ने।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में है। फिल्म का नाम है दिल दे के देखो। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत उषा खन्ना का।

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना दिल दे के देखो फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं तेरे घर के सामने फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत एसडी बर्मन का, आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:25 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आर्थिक विकास थीम पर विशेष कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।
2: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार
3: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
4: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया। कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें UK से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
3: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल फाइव में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है, उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
4: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने। 1,300 स्टेशन्स का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन्स में से करीब करीब 250 स्टेशन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, माने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना। कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
3: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
4: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
3: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
4: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
3: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
4: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
3: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
4: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
3: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
4: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
3: जी,
4: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर दी सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
3: तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
4: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, 6 सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
3: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो 2 ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
4: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के CEO का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके CEO मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने

0: ड्रग्स का ले लो चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो, तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के इस तरीके की
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, इसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो।
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रख कर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में

0: किसी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है। हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
0: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया, केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, DBT के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस UPA सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज्ड PM का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज्ड PM वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है UPI के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देख देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है, गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो, जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगे, राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे। वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है। और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है। लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान अमेरिका इजराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं। ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए। ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं। लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलसी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।
3: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आर्थिक विकास थीम पर विशेष कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विविध संगीत। कार्यक्रम विविध संगीत में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम के स्वर में दाग दहलवी की इस रचना को।

देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप।

0: जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम विविध संगीत में लीजिए, हम आपको सुन पा रहे हैं फैज अनवर के लिखे हुए इस गीत को। संगीत है निखिल विनय का, स्वर उदित नारायण का।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध संगीत। विविध संगीत में लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के गाए हुए इस गज़ल को। शायर हैं बहादुर शाह ज़फ़र।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली,
6: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
7: कार्यक्रम के अंत में लीजिए हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत सावंत के स्वर में समीर की इस रचना को, संगीत है बिद्दू का।

पवन के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम विविध संगीत अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें। कार्यक्रम यादें का पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म ताजमहल का ये गीत। शाहिर की शब्द रचना है, संगीत है रोशन का।

पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें में लीजिए सुनिए गीता दत्त के गाए हुए इस गीत को। रचना है मजरू की, संगीत ओपी नैयर का, फिल्म का नाम आर पार।

पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से FM 100.7 MHz पर। कार्यक्रम का अगला गीत यशुदास के स्वर में, इंदिवर के लिखे हुए गीत को सुरों में ढाला है उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम साजन बिन सुहागन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz। इस वक्त आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें, श्री 420। आइए इस फिल्म का हम गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों के स्वर में। शैलेंद्र की शब्द रचना है, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आराधना, क्षमा करिएगा बातों बातों में। आइए इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अमित कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में योगेश के लिखे हुए इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

आराधना, आइए इस फिल्म का नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: कार्यक्रम के अंत में लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश के स्वर में शैलेंद्र के लिखे हुए इस गीत को। संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम मधुमती।

मुकेश के गाए हुए इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
1: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
3: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Emir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. They paid tribute to Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anurag Kumara Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in his personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership. Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, noted that under the leadership of Prime Minister Modi, India has evolved as a leading voice on global matters. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System, LPMS Vinimay, in New Delhi, marking a major step towards digitizing and streamlining cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative reflects the government's commitment towards building a modern, technology-driven border management system. He said the platform is aligned with the vision of Vikasit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security. And with that, we end this news bulletin.
4: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब संपन्न होता है। कल के प्रसारण